जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

उधार श्याम, तुझे चुकाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे देखता हूं और किश्तें अदा हो जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8।

0: राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल। मैं हूं गगन आपके साथ। आज एक खास विषय है जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। इस विषय को आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। एक टीचर, एक गुरु जिसको हम उस्ताद भी कहते हैं, वो हमारी जिंदगी में रोशनी का काम करते हैं। वो हमें उस राह पर लेकर जाते हैं जिस राह की जो मंजिल है बड़ी ही खूबसूरत है। और कहा भी जाता है कि गुरु का जो स्थान है वो भगवान से भी ऊंचा है। गुरु का ज्ञान हमें जीवन में सफलता दिलाता है और कहते भी हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। जी हाँ, आज ऐसी शख्सियत से हम मिल रहे हैं जो बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी बड़ा दखल रखते हैं। और ये सारी तमाम बातें आज हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक शख्सियत जुड़ रही हैं। आप हैं जिम्स वसंत कुंज दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर रवि के धरजी। तो सर, सुरुशादा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: कैसे सर आप?
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक ठाक, प्रभु की कृपा से सब ठीक है।
0: वेरी गुड सर। उसी ईश्वर से, परमात्मा से मैं यही कामना करता हूँ कि हम सब निरोग रहें। कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि प्रथम सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है घर में माया। इसी प्रकार से कई सारे सात आई थिंक सुख बताए गए हैं और यही सारी बातें मैं आपसे जरूर जानूंगा। तो सर, मैं जो देख रहा था, पढ़ रहा था आपके विषय में, मैं देख पाया कि 38 साल का अनुभव है आपका इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो मैं आपसे इस सफर के बारे में जानना चाहता हूं कि इस सफर को आप कैसे देखते हैं। सुहाना सफर रहा, इस सफर में बहुत सारी दिक्कतें आई, परेशानियां आई, क्या कहना चाहते हैं?
1: सफर तो सुहाना ही रहा। ये मेरा जीवन से सबसे पहला मेरा जो उद्देश्य था वो यही था कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में आना है और टीचर बनना है।
0: जी,
1: तो ये मेरा सेकंड या थर्ड बेस्ट ऑप्शन नहीं था, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन था जिंदगी में। क्योंकि, और वो भी बचपन से, जब मैं सैनिक स्कूल गया था, क्योंकि शिक्षा मेरी सैनिक स्कूल में हुई है, तो मुझे आर्म्ड फोर्सेस में जाना था। मैंने अपना NDA भी क्लियर किया था, UPSC एग्जामिनेशन, फिर SSB के लिए गया। तो जीवन की दिशा पहले से ही निर्धारित थी, इसलिए कहीं ना कहीं ये प्रभु को भी पता था और मुझे भी पता था कि मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो शिक्षा ही है।
0: जी।
1: तो इसलिए उसके बाद जब मैं कॉमर्स कॉलेज गया तो आई वॉज अ टॉपर इन द यूनिवर्सिटी, मगर उसके बावजूद, हालांकि मैं BCOM स्टूडेंट था, तो हो सकता था कि मैं कहीं और निकल जाता, किसी और व्यवसाय में या किसी और प्रोफेशन में चला जाता, और ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज भी आई, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जॉब मिली, अलग अलग ऑप्शंस एक कंपनीज में मिली। तो मगर मेरा, क्योंकि पहले से ही डिसाइडेड था कि शिक्षा में ही आना है, तो इसलिए मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही आया। और मैंने जीवन भर इसको बहुत एंजॉय किया, क्योंकि शिक्षा से बढ़ के कोई चीज नहीं।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और शायद यही एक वजह है, मेरे मथुरा में कहा जाता है कि गुरुजी दंडौत, गुरुजी पाए लागे। अक्सर हमने देखा है कि लोग चरण स्पर्श के अलावा दंडौत, यानी कि वो दंडवत भी करते हैं, क्योंकि गुरु ही है जो हमारी जिंदगी में परिवर्तन लाता है, एक राह दिखाता है और एक अच्छा इंसान हमें बनाता है।
1: बिल्कुल, जो दंडवत प्रणाम है
0: जी,
1: उसमें एक रहस्य छुपा हुआ।
0: प्लीज प्लीज बताइए सर।
1: जो जी, बहुत बड़ा रहस्य है। जब आप दंडवत प्रणाम करते हैं, दंडवत मतलब एक स्टिक की तरह आप फ्लैट होके गिरते हैं,
0: गिरते हैं,
1: चरणों में गिरते हैं। जो चरण होते हैं, जो हमारे पांव होते हैं, वो बेस्ट ट्रांसमीटर ऑफ एनर्जी।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इसी बात पर मैं भी आऊंगा सर। जी जी जी।
1: आपके जो बाल होते हैं सिर के, वो बेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एनर्जी होता है।
0: क्या बात।
1: जब आप गुरु के चरणों में अपना सिर रखते हैं, तो आप गुरु अपनी जो चेतन
0: ऊर्जा
1: है, उसको आपकी तरफ
0: ट्रांसफर कर
1: करते हैं, आपको देते हैं, और आपकी उसमें जो आध्यात्मिक यात्रा है
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा आपने एक उत्तर दिया है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे श्रोता हैं इस बात को जानेंगे, समझेंगे। मैंने आपसे कहा कि सर मैं भी इसी बात पर आऊंगा, क्योंकि मैंने जो देखा है, पढ़ा है, और इसके बारे में विस्तार ब्रेक के बाद जरूर जानूंगा। लेकिन मैं इशारा कर देता हूँ अपने लिसनर्स को कि कहते हैं कि जब हम चरण स्पर्श करते हैं और मस्तिष्क तक लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है जो अभी आपने हमें बताया कि ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। आता है, सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही होती है। लेकिन सर आज का जो समय है बहुत ध्यान देने वाली बात है कि चरण स्पर्श की जो परंपरा है वो खत्म हो गई और घुटना स्पर्श हो गया है। इस बारे में मैं आपसे जरूर जानूंगा कितना सही है कितना गलत है और अपनी संस्कृति को हम क्यों भूल रहे हैं। सो लिसनर्स यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ये जो बातों का सिलसिला बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि एक विद्वान एक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप हैं प्रोफेसर डॉक्टर रवि के धर जी जो कि जिम्स वसंत कुंज दिल्ली में डायरेक्टर हैं और 38 साल का अनुभव है। इस विषय पर जरूर जानेंगे मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में हैं जिम्स वसंत कुंज के, आप डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर रवि केधर सर। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जो बातों का सिलसिला आपने शुरू किया उसमें मुझे एक बात याद आ गई थी, मैंने बात रखी आपके सामने, चूंकि मीडिया पर्सन होने के नाते जो हम आप लोगों से सीख रहे हैं, क्योंकि आप भी मीडिया स्टूडेंट्स को बनाते हैं, उनको बहुत कुछ सिखाते हैं। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है सर, हम समाज में ये देखते हैं कि चरण स्पर्श की जो कला है, जो खूबसूरती है, वो कम हो गई है, लोग घुटना स्पर्श कर रहे होते हैं। जी
1: उसका जो कारण है, एक तो ये तो एक घटना है, एक इंस्टेंस है जिसके जो जो दर्शाता है कि किस प्रकार से हम अपनी जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, उससे हम कितने कट गए हैं। एक्चुअली जो जब हम कल्पना करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं अपनी जो संस्कृति को, जो इसमें प्रिजर्व्ड है हमारे हिंदू धर्म में जिसको हम फॉलो करते हैं, इससे हम बिल्कुल कट चुके हैं। हम जरूर अपना गर्व करते हैं कि हम हिंदू हैं, हम कहते भी हैं गर्व से को हम हिंदू, मगर धर्म का जो आधार है वो है सनातन धर्म।
0: क्या बात।
1: और जो सनातन धर्म है वो किसी मजहब से जुड़ा नहीं है, किसी पंथ से नहीं जुड़ा है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, मतलब क्योंकि हम बिल्कुल कट चुके हैं अपनी विरासत से, इसलिए हमको बेसिक्स भी नहीं पता।
0: बहुत खूबसूरत।
1: हम अपने जो रिलीजन होता है या जिसको हम पंथ कहा करते थे, और पंथ जो होता है वो सांस्कृतिक और व्यवहारिक होता है।
0: क्या बात।
1: और व्यवहारिक और सांस्कृतिक जो है वो तो दिखता है, वो दिखने में किस प्रकार से हम क्रियान्वयन करते हैं अपनी सोच का और अपनी विचारधारा का।
0: जी।
1: जो विचारधारा और सोच है इसके पीछे जो छुपी है हुई है वो सनातन धर्म है। और जो सनातन धर्म है उसको हमें इससे अलग रखना चाहिए। जब हम हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू पंथ है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे मतभेद भी हुए हैं, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई सिख है, कोई बुद्ध है, कोई जैन है, मगर जब हम इनकी इवन हम जब गुरबानी में जाते हैं तो वहाँ पे क्लियरली गुरु नानक देव जी कहते हैं मने मग न चले पंथ, मने धर्म सेती संबंध। सो जब गुरु नानक देव जी पंथ की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो एक एनलाइटेंड माइंड होता है, जो
0: प्रकाशमान माइंड
1: शक्ति से मतलब जागृत अवस्था में जो सोल होती है, आत्मा होती है, वो किसी भी पंथ के निर्धारित जो होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंड नहीं होता। तो फिर वो बाउंड किससे होता है? अगर वो कहते हैं कि बाउंड वो सिर्फ धर्म के बंधन से होते हैं।
0: जी।
1: तो क्लियरली गुरु नानक देव जी भी यहाँ पे अंतर लाते हैं पंथ और धर्म के बीच में, क्योंकि सनातन का मतलब इटर्नल, धर्म हो गया प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस, हार्मनी, लव, कंपैशन, ये है प्रिंसिपल्स। और ये कुदरत में, प्रकृति में,
0: जी,
1: ये एम्बेडेड है,
0: विद्यमान है।
1: इसी हमारे ऋषि मुनियों ने इसको पहचाना कि इसमें प्रकृति में क्या क्या नियम है, जैसे साइंस ने ढूंढे, तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी ढूंढे, और इसी को यूज करके, इन्हीं के आधार पे उन्होंने अपने अंदर वो सब आयाम ढूंढे जो कि विजिबल नहीं है, दिखते नहीं है, और इस प्रकार से उन्होंने फिर कहा अहम ब्रह्म अस्मि। तो ये एक साइंस है, एक विज्ञान है, एक प्रिंसिपल है, ये विचारधारा है, एक विजन है। और ये विजन किसी की भी संपत्ति, किसी वर्ग की संपत्ति नहीं है,
0: नहीं।
1: ये कट अक्रॉस करता है सब रिलीजियस कैटेगरीज को। और अगर हम सनातन धर्म को समझ लें, जो हमारा मूल है, आधार है, तो इस देश में कभी भी कम्युनल डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगे,
0: बहुत अच्छा,
1: सब लोग समन्वय में रहेंगे। यहाँ तक कि अगर आप इस्लाम में भी जाएंगे, क्रिश्चियनिटी में भी जाएंगे, क्योंकि मैंने क्रिश्चियनिटी का भी अध्ययन किया है, तो वहाँ पे भी आप यही मूल सिद्धांत आपको मिलेंगे
0: जी।
1: तो अंतर कहाँ है? अंतर रिलीजन के लेवल पे है, ना कि सिद्धांतों के लेवल पे। जो मूल सिद्धांत है
0: वो सबके एक है जी,
1: वो सबके एक है, मगर अभिव्यक्ति अनेक है। और क्योंकि हम उससे कट गए हैं तो दंडवत प्रणाम क्या, हम सब कुछ भूल चुके हैं,
0: सब कुछ भूल चुके हैं, सब
1: पता
0: कुछ
1: कि हमारे वेदों में क्या कुछ नहीं है। हमारे वेद जो है उनमें इतना ज्ञान है, मगर आप किसी से भी पूछिए, न वेद का पता है, न उपनिषद का पता है, इवन भागवतम का किसी को नहीं पता है। भागवतम में क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान की सरिता उसमें बह रही है
0: जी,
1: उससे भी वंचित है। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से एक लिप सर्विस कर रहे हैं, हम कर्म कांड में रिचुअल में फंस गए हैं। और भागवतम इज हाईली क्रिटिकल ऑफ रिचुअलिज्म, हम उसी को धर्म समझ बैठे हैं।
0: ठीक है,
1: ये हमारी अवस्था, उसका कारण है कि हमारी शिक्षा प्रणाली, शिक्षा पद्धति जो है वो अंग्रेजों ने आके बिगाड़ दी। उन्होंने हमें इस ज्ञान से वंचित कर दिया, ये कह के कि संस्कृत जो है कर्मकांड की भाषा है, आप पंडित बन जाओगे, आप रिलीजियस हो जाओगे, आप प्रोग्रेसिव नहीं रहोगे, सुपरस्टिशियस बन जाओगे। तो ये तो रिलीजन के साथ एसोसिएटेड चीजें थी, सनातन धर्म के साथ नहीं है एसोसिएटेड। सनातन धर्म तो अपने में एक साइंस है,
0: बहुत खूबसूरत।
1: तो और संस्कृत हमने छोड़ दी, तो इसलिए हमको पता ही नहीं है कुछ। हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, हमारे यहाँ कवि किसको कहा जाता था? कवि सीयर पोएट होता था, जो देख सकता है। इसलिए हम फिलोसफी वर्ड नहीं यूज करते, हम दर्शन वर्ड यूज करते,
0: दार्शनिक।
1: दर्शन का अर्थ होता है देखना,
0: देखना
1: मतलब देख के हम सत्य की अभिव्यक्ति करते थे। हम कंस्ट्रक्शन नहीं करते थे, थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्शन, थ्योरी बनाएंगे, थ्योरी को फिर टेस्ट करेंगे। हम देखते थे, देखने के आधार पे हम प्रत्यक्ष देख के फिर हम कहते थे ये सत्य है। जिस प्रकार हम आंखों से देखते थे, हम वो अपने मन की आंखों से, अंदर जो चैतन्य शक्ति से, चेतना से हम अनुभूति करते थे, फिर सत्य की व्याख्या करते।
0: बहुत खूबसूरत, ठीक है सर।
1: ये सब चीजें हम वंचित हो गए, हमारी शिक्षा पद्धति गिर गई।
0: जी जी, ये सोचना पड़ेगा हम सबको लिसनर्स कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, और दिशा अगर हमारी गड़बड़ हुई तो नो डाउट कि हमारी दशा बिगड़ जाएगी। एक छोटा सा विषय मैंने उठाया और उस पर सर ने जो व्याख्या की, बहुत खूबसूरत व्याख्या की है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ने जिक्र किया वेद उपनिषद के बारे में, अच्छी बात है, अगर आपको पता है, नहीं पता तो प्लीज उनके बारे में जानिए। लेकिन मैं एक और बात रखना चाहूंगा सर इसके विषय में, मैं आपसे ब्रेक के बाद जरूर जानूंगा, कि दूसरों का सम्मान करो, बड़ों का अदब करो, छोटों से प्यार से बोलो। स्कूल कॉलेजेस के बाहर हम देखते हैं तो ये प्यार किस रूप में है, किस दिशा में है? वहीं स्मोकिंग भी कर रहे होते हैं, उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि शायद ये आम भाषा है, यही हमारी भाषा है। लेकिन वो इस बात को शायद ध्यान रखते हैं कि मुझे अपने मम्मी पापा या भाई बहनों के सामने नहीं बोलना है। लेकिन जब कोई दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं या टीचर भी पास से गुजर रहा होता है, वो अदब भी कहीं ना कहीं हम भूल चुके हैं। तो अगर यही हालत रहे तो जिस तरीके से विश्व गुरु की हम बात करते हैं तो शायद कहीं हम पिछड़ ना जाएं, क्योंकि भारत एक युवाओं का देश है और इसके बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है। और इसी पर बात करने के लिए यूं समझ लीजिए कि आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर रवि केधर जी, जो कि 38 साल का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा अनुभव है। आप डायरेक्टर हैं जिम्स वसंत कुछ दिल्ली में। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम आपको मिलते हैं। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन, आपके साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप हैं डायरेक्टर जिम्स वसंत कुंज दिल्ली से, प्रोफेसर डॉक्टर रवि केदार जी, जो कि बहुत अच्छी अच्छी बातें आप हमें बता रहे हैं। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: सर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो बातों का सिलसिला है यूं ही चलता रहे, लेकिन समय सीमा का मुझे ख्याल रखते हुए मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, जो मैंने आपसे बात रखी थी ब्रेक पर जाने से पहले, आपने बहुत गहराई वाली बातें की, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है इस तरह की बातें को सुनने में, समझने में, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक विकास हो रहा होता है। लोग किस दिशा में जा रहे हैं, स्टूडेंट्स किस दिशा में जा रहे हैं, चूंकि आप एक विद्यालय में हैं, एक विश्वविद्यालय में हैं, एक इंस्टीट्यूशन में हैं, हम भी शारदा विश्वविद्यालय में हैं, ये कल्चर हम देख रहे हैं। तो सर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि यूथ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या तो वो सोशल मीडिया के जरिए समझ पाता है या समझ नहीं पाता है, और एक नशा जो है वो नशा स्मोकिंग है, नशा जबकि पढ़ाई का हो सकता था, नशा सिर्फ प्यार का हो सकता था, नशा अदब का हो सकता था। तो ये जो कल्चर चेंज हुआ है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं और कैसे वो अपने व्यक्तित्व में शिक्षा के माध्यम से निखार ला सकते हैं?
1: इसमें सबसे पहले तो जो इसका मूल कारण ये है कि बच्चे को ना घर पे कोई संस्कार दे रहा है, ना कॉलेज में दे रहा है।
0: जी,
1: कॉलेज में हमारी फंक्शनल एजुकेशन हो गई, क्योंकि मैकॉले ने यही सिस्टम एक इंट्रोड्यूस किया, उनको लेबर चाहिए थी, उनको बाबू चाहिए थे, और अभी तक हम उसी शिक्षा पद्धति को चला रहे हैं। तो यहाँ पे सांस्कृतिक और फिलोसॉफिकल एजुकेशन इंसान को नहीं हम बनाते, हम एक रिसोर्स को बनाते हैं। मैनेजमेंट में हम इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं, हमने ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन रिसोर्स बना दिया है। तो इसलिए उसको सिर्फ फंक्शनल स्किल्स क्या होनी चाहिए, कैसे नौकरी पैसे कमाएगा, कैसे जिएगा, तो ये हमारा सारा जो घूम रहा है चक्कर, वो एक ही धुरी के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो है कि किस तरह से आप अपना सर्वाइवल एंश्योर करोगे। मगर उस सर्वाइवल जिसका है, उस व्यक्ति का सशक्तिकरण कैसे होगा, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ना घर पे ना शिक्षा संस्थान में। घर पे पेरेंट्स के पास समय नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर है, सुबह पेरेंट्स निकल जाते हैं 8 बजे, रात को 8 बजे वापस आते हैं, तो बच्चों के लिए उनके पास समय नहीं है, तो उनको मेड संभाल रही है या क्रेश में जा रहे हैं। तो ये संस्कार जो मिलने चाहिए थे बच्चों को मिलने हैं। गुरु नानक देव जी की बात मुझे याद आती है, गुरबानी में वो कहते हैं कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होता है मनमुख, एक होता है गुरुमुख। हम जो आजकल जो हमारी सारी जो शिक्षा पद्धति है वो फंक्शनल एजुकेशन दे रही है, स्किल बेस्ड एजुकेशन दे रही है, या थ्योरी भी दे रही है, तो वो भी इसीलिए है कि रोजी रोटी कैसे कमानी है। तो उसके कारण वो सारा उसका जो बच्चे का जो ध्यान है वो बाहरी संसार के ऊपर केंद्रित है, तो वो मनमुख हो गए हैं। जो माइंड है वो मन है, मन जो है वो कनेक्टेड है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। हमारे सनातन धर्म में जब आप शिव जी को देखते हैं, उनकी मूर्ति को देखते हैं, तो उनके सिर पे चंद्रमा होता है, चंद्रमा जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, उसकी अपनी लाइट नहीं होती और वो ठंडा होता है। तो इसी प्रकार आपका जो मन है, इसके अपने विचार नहीं होते, ये सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है विचारों को, ये अपनी उपज नहीं होती, विचार इसके अंदर से नहीं निकलते, या तो संसार से, बाहरी संसार की जो सेंसरी परसेप्शन से, जो इंद्रियों से उसको सेंसेशंस मिलती हैं, उनसे, उनके आधार पे वो अपने विचार बनाता है। जो गुरुमुख होता है वो बाहरी संसार से न कनेक्ट करके अपने आप को अपने हृदय के में जो वास करते हैं, श्री कृष्ण कह दीजिए, ब्रह्म कह दीजिए, कुछ भी, अल्लाह कह दीजिए, खुदा कह दीजिए, जो भी अंदर, जैसे भी आपकी संस्कृति है, उसके अनुसार जो अंदर वास करता है, उसकी तरफ
0: कनेक्ट होने की कोशिश करता है,
1: कनेक्ट करता है, तो उससे क्या होता है अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पे चाहे क्रिश्चियनिटी हो, सेक्रेड हार्ट कहते हैं क्रिश्चियनिटी में, हमारे यहाँ पे साइकिक हार्ट कहा गया है सनातन धर्म में।
0: जी,
1: तो चेतना का वास यहाँ पे होता है एक्चुअली इंटरनल, तो वहां से वो कनेक्ट होता है, तो उसके विचारों की श्रृंखला वहां से निकलती है और रिफ्लेक्ट माइंड में होती है, तो माइंड परसीव करता है इनर रियलिटी। इनर रियलिटी से जब आप इनर कंट्रोलर से आप कनेक्ट होते हैं, तो फिर आप जो बाहरी संसार जो आपका प्रोजेक्शन है, आप उसके मास्टर बन जाते हैं। श्री अरविंदो कहते हैं पहले स्वराट फिर सम्राट, जो स्वराट बना वही सम्राट बनेगा। सम्राट आप ऐसे नहीं बन सकते, आप बाहर के संसार को बदलने की कोई चेष्टा कीजिए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत विस्तृत है। आप अपने अंदर की दुनिया जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। आप उसके अंदर अपनी चेतना में अगर रूपांतरण लाएंगे, उसमें क्वालिटेटिव चेंज लाएंगे, उसमें जब क्वालिटेटिव चेंज आएगा आपका बाहरी संसार अपने आप उसमें एक काया कलप आएगा, वो चेंज हो जाएगा।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: और इसी के ऊपर लोगों ने कितनी किताबें लिख ली, द सीक्रेट वगैरह।
0: ये जी,
1: क्योंकि अंततः आपके अंदर का जो संसार है, क्योंकि हम इसीलिए कहते हैं ना अहम ब्रह्मा अस्मि, आई एम द लिमिटलेस सेल्फ। तो इसलिए शिक्षा पद्धति का ये अभाव है, शिक्षा पद्धति इसको टारगेट नहीं कर रही, इसको अग्रेस नहीं कर रही। तो हमें ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि जो साइंस ऑफ वेदास है, साइंस ऑफ उपनिषद है, ये साइंस है, ये कोई रिलीजन नहीं है, ये मंबो जंबो नहीं है, ये कोई जादू टोना नहीं है,
0: ठीक है,
1: ये ज्ञान है मनुष्य के सशक्तिकरण का।
0: बहुत अच्छा।
1: आप वहाँ पे सशक्त हो जाएंगे फिर आप संसार में कर्म कीजिए।
0: जी, जी।
1: आपका कर्म, आप अपनी संकल्प शक्ति से चीजें कर सकते हैं,
0: ठीक है,
1: संकल्प शक्ति से।
0: मैं इसी जी
1: कहता है कि वो जो कर्म आप एफर्टफुल एक्शन जो करते हैं वो व्यर्थ है, एफर्टलेस एक्शन होना चाहिए।
0: सो लिसनर्स, कहने का एक आशय यही है, अगर इस बात का निचोड़ निकाला जाए, सर ने जो जिक्र किया कि हमारे जो संस्कार हैं, जो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से कमाए हैं, जो हमने उनको अडॉप्ट किया है, वही अगर हम अपने बच्चों में दे पाए तो निश्चित तौर पर उनके व्यक्तित्व में निखार आएगा, और व्यक्तित्व में जब निखार आएगा तो वही एक बच्चा आगे चल के देश के निर्माण में अपना योगदान देगा। बात हुई साधने की, मैं कहूंगा कि अगर आप अपने आप को साध रहे हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, अंदर जो क्या है, जो एक चेतना है, उससे आपने कनेक्ट अपने आप को कर लिया, तो निश्चित तौर पर जहां संकल्प होगा उसमें कोई विकल्प आ ही नहीं सकता और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ब्रेक के उस पार आएंगे और बात करेंगे, सर ने जो एक इशारा मुझे किया है कि एजुकेशन पॉलिसी, शायद मैं समझ पा रहा हूं या नहीं समझ पा रहा हूं, इसके बारे में हम सर से जरूर जानेंगे ब्रेक के उस पार, कि पुरानी पॉलिसी और नई पॉलिसी में क्या फर्क है और क्या हम बेहतर कर सकते हैं। वर्तमान समय में कुछ चीजें हो भी रही हैं और अगर इस तरीके से इंसान अपने जीवन में शामिल कर ले, एक विद्यार्थी अपने जीवन में अच्छी अच्छी बातों को शामिल कर ले, तो निश्चित तौर पर उसकी जय जयकार होती है। और कहते भी हैं कि यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, लेकिन जो अच्छा करता है तो उसकी जय जयकार जरूर होती है। वक्त है यहां पर एक छोटे से ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो में आज जो खास मेहमान है, फोनिक हमारी बातें हो रही, आप डायरेक्टर हैं जिम्स वसंत कुंज दिल्ली में, प्रोफेसर डॉक्टर रवि के धर सर। तो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: बारे में हम बात कर रहे हैं, व्यक्तित्व के बारे में, हम संस्कारों के बारे में बात कर रहे हैं, एक विद्यार्थी को किस तरीके से अपनी जिंदगी में चार चांद लगानी चाहिए, यही सारी बातें हम कर रहे हैं। हमारे साथ एक एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर रवि केदार सर, आप डायरेक्टर हैं जिम्स वसंत कुंज दिल्ली से। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: सर। आपने जो एक बात कही कि ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, शिक्षा हमारे जीवन में एक परिवर्तन ला सकती है, ये सच बात है, और हमारे इसमें संस्कार मिल जाए, इसमें अदब मिल जाए, कुछ आध्यात्मिक बातें मिल जाएं, तो नो डाउट एक जिंदगी में बहुत अच्छा चेंजेस आते हुए हमें नजर आएंगे। सर मैं इस बात को यूं कहूं कि या मैं आपसे समझना भी चाह रहा हूं कि पुराने समय की बात करें और अब वर्तमान समय की हम बात करें, शायद एजुकेशन पॉलिसीज थी पहले, कुछ अब आई हैं, तो कितना फर्क आप महसूस करते हैं, क्या बदलाव महसूस करते हैं, क्या सही था क्या गलत है, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? सर
1: मैं एक तो जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव तो है। जैसे उन्होंने बात की है कि हमारा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसको हमें रिवाइव करना चाहिए और उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात कही गई है। मगर इसमें जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, हमें ये समझना चाहिए कि उस समय जो ज्ञान जो लिखा जाता था किताबों में वो पोएटिक रूप में लिखा जाता था। मतलब पोएटिक जब मैं कहता हूँ मतलब सिंबॉलिक, सिंबल्स के द्वारा, क्योंकि उस युग के लोग अलग थे, संस्कृति उनकी अलग थी, उनका समझने का तरीका अलग था, वो सिंपल लोग थे, वो पोएट्री की जो सिंबॉलिक भाषा है उसको सहज ही ढंग से समझ लेते थे। हम जिस युग में रहते हैं वो साइंटिफिक युग है, रैशनल युग है, इस युग हम प्रोदेक लोग हैं, हम प्रोज वाले लोग हैं, पोएट्री वाले लोग नहीं है। हमें चाहिए कि उसी ज्ञान को अब साइंटिफिक वे में हमें पेश करने की आवश्यकता है। अब साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है कि अब इस साइंस के प्रगति के आधार पे हम बहुत अच्छे से अपनी जो वेद और उपनिषद है उनको साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर उनको हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं तो उससे बहुत हमारे जो लाभ होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कहा गया है जहाँ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी हमारे यहाँ पे क्योंकि एक भ्रांति रही है स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया तो साधु बन जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ये भ्रांति मन से निकाल लीजिए, क्योंकि ये जो है ये करप्शन है हमारी थॉट का, क्योंकि बीच में जब क्योंकि हम वैदिक ज्ञान से कट चुके थे और बीच में जो अलग अलग जो मूवमेंट्स आए, रिवाइवल्स आए, उनमें संन्यास का बहुत ही ज्यादा फोकस था, उससे हमें लगा कि जो इस तरफ जाएगा तो वो सन्यासी बन जाएगा, साधु बन जाएगा, वो संसार छोड़ देगा। मगर अगर आप वैदिक ऋषि देखो वो सब हाउस होल्डर रहे हैं, वो गृहस्थ थे सारे हमारे, तो और जो संन्यास और वानप्रस्थ वो तो सिर्फ एक दो आश्रम है हमारे जीवन में, बाकी ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम वो दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है।
0: जी।
1: तो वेद कभी नहीं कहता कि आप अगर इन सब चीजों का अध्ययन करते हो तो आपको साधु बनना है, क्योंकि वेद जिस बात की जिस ज्ञान की चर्चा करता है वो इंटेग्रल नॉलेज है, वो ये नहीं है, उस वो डिफरेंशिएशन नहीं करता कि ये आध्यात्मिक ज्ञान है और ये सेक्युलर ज्ञान है कि अर्थली ज्ञान है, ये आपको रोटी रोजी रोटी कमाएगा, वो दोनों को इकट्ठे लेता है, उसमें समन्वय है दोनों का, क्योंकि वो ये इसको कंटिन्यूअम मानता है।
0: जी।
1: और इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ,
0: मंत्र
1: में जब हम बात करते हैं पांच तत्वों की बात करते हैं कि ये संसार पांच तत्वों से बना है, पृथ्वी जल
0: वायु
1: अग्नि वायु और आकाश, ये हम क्या समझते हैं, हम इसका मूल मतलब लिटरल मीनिंग ले लेते हैं, ये सिंबल्स है, पृथ्वी का अर्थ पृथ्वी नहीं है, यहाँ पे पृथ्वी का मतलब है सॉलिड, जो फिजिक्स में हम पढ़ाते हैं
0: जी,
1: थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, तो पृथ्वी का मतलब है सॉलिड, जल का मतलब है लिक्विड, और जो वायु है उसका मतलब है गैसेस, ये तीन स्टेट्स है मैटर की, और ये स्टेट्स चेंज किससे होते हैं, अग्नि से, इसलिए पृथ्वी जल अग्नि वायु, और जब उसको और हीट देंगे लिक्विड को तो वो क्या बन जाएगा, आकाश, क्योंकि मॉलिक्यूल इतने दूर हो जाएंगे कि वहां पे सिर्फ स्पेस रहेगी सिर्फ

0: अंतरिक्ष रहेगा, वहां कुछ नहीं रहेगा। तो ये सारा साइंटिफिक है,
1: साइंटिफिक
0: हमें समझने की। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर हमें शिक्षा पद्धति को बदलना है और अपने देश को प्रगति की राह पे अग्रसर करना है, सबसे पहले हमें इनका साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन कराना चाहिए सारे हमारे ज्ञान का, और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी और साइंटिफिक वे में उसको एक्सप्लेन जब हम करेंगे
1: जी,
0: तो हम पाएंगे कि ये ज्ञान हमारे लिए इतने अनलॉक करेगा सीक्रेट्स जिससे कभी आपको बीमारी नहीं होगी।
1: क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी बातें सर।
0: आप योग, राजयोग, इनको सबको हमने अलग अलग कर दिया है। हम फ्रैगमेंटेशन में चले गए, हम इंटीग्रेशन में नहीं रहे, जबकि वेद इंटीग्रेशन पे फोकस करता है ना कि फ्रैगमेंटेशन पे। और जितना हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम पाएंगे कि हम अगर हठयोग करेंगे उसी में राजयोग भी हो जाएगा, उसी में आपकी समाधि भी हो जाएगी और
1: सारे काम हो जाएंगे,
0: आपको शक्ति देगा इस संसार में काम करने का। और देखिए एक सुंदर शब्द आता है वेद में, वो शब्द है आर्य। आर्य का शब्द, आर्य शब्द का जो अर्थ है वो महर्षि अरविंद ने बखूबी समझाया है। आर्य किसी रेस का नाम नहीं है, ना किसी भाषा का नाम है। आर्य उस व्यक्ति का नाम है जो कि अपने चैतन्य शक्ति से कनेक्टेड है, जिसमें चैतन्य शक्ति का वास है, क्योंकि उसमें चैतन्य शक्ति है। वो शक्ति जो है न्यूक्लियर एनर्जी से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो शक्ति है।
1: क्या बात?
0: और ऊपर चैतन्य भी है, कॉन्शियस भी है। तो उसमें जब एक कोई संकल्प बनता है, एक इंटेंशन बनता है, तो वो उसमें शक्ति इतनी जाती है उस संकल्प में कि वो क्रियान्वित हो जाता है, एकदम से वो रियलाइज हो जाता है
1: जी।
0: तो ऐसे व्यक्ति का संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता।
1: क्या बात?
0: तो ऐसे व्यक्ति को आर्य कहा गया।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: तो ये सब चीजें हम भूल चुके हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है, हम बच्चे बन गए हैं, पूरा अज्ञान के अंधकार में हम घूम रहे हैं। और पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी ज्ञान जो है वो तो बहुत कुछ नहीं है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है जब हम उसको कंपेयर करते हैं वेदों के ज्ञान के साथ। मगर हम उसी में डूबे हुए हैं, वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी को डील करता है, जबकि हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों को लेते हैं और उनका इंटीग्रेशन करते हैं
1: जी। जी,
0: क्योंकि अगर आप एक व्हील को देखें, व्हील के अंदर जो हब होता है, धुरी होती है उसके, जिसके एक्सिस होता है, जिसके इर्द गिर्द वो पहिया घूमता है, वो न मोशन में होता है न रेस्ट में होता है, वो ट्रांसेंडेंटल होता है
1: जी। जी,
0: जिसको हम कहते हैं गुणातीत, गुणातीत परा पर ब्रह्म, वो उस अवस्था में होता है।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा।
0: और इर्द गिर्द जो घूम रहा है पहिया वो आपका प्रकृति को दर्शाता है, उसमें स्पेस भी है और समय भी है, काल भी है, इसलिए उसको काल चक्र कहा गया।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी आपने।
0: दोनों इकट्ठे हैं, हम क्या करते हैं उसको अलग कर देते हैं कि प्रभु अलग है, व्यक्ति अलग है। ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ हम बार बार हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, मतलब सर्वव्यापी का अर्थ तो समझो।
1: समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बिल्कुल सही आपने कहा सर कि उस अर्थ को समझना पड़ेगा। और लिसनर्स, मैं बस यही कहूंगा कि इस बात का अगर एक सार निकाला जाए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ, संस्कारों के साथ, संकल्प के साथ, अपने ज्ञान को अर्जित करते हुए, उसमें इजाफा करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइए। और अगर आपको ऐसे गुरु मिल जाए मिस्टर रवि के धर सर जैसे, तो निश्चित तौर पर उनके आप पैर पकड़ लीजिए, जानिए, समझिए, उनकी संगत करिए, और वहां जब आप बैठे रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जरूर। ये संस्कार रहे हैं भारत के, ये परंपराएं रही हैं भारत की, क्योंकि आपको वो खाली पात्र रखना पड़ता है, आपको झुकना पड़ता है। लेकिन जिस व्यक्ति में, जिस स्टूडेंट्स में, अगर कहते ना आम भाषा में कहा जाए, ऐठ आ गई कि हाँ गुरु जी, हाँ टीचर जी, मुझे सब कुछ आता है, और आप अदब ना करेंगे, सम्मान ना करेंगे, तो मैं समझता हूं कि आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान की खूबसूरती यही रही है कि हिंदुस्तान विश्व गुरु था, विश्व गुरु, विश्व बंधु बन सकता है, हम आगे चल सकते हैं, और हम अच्छा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अच्छा करेंगे, क्योंकि हम युवाओं का देश है। और अधिक जानकारी के लिए यूं कहूंगा कि सर का एक YouTube चैनल है, वहां पर आप विजिट कर सकते हैं, मिस्टिक मरीनर। कहा जाए तो रहस्यवादी नाविक। तो इस तरीके से बहुत ज्ञान विज्ञान की बातें, जिंदगी को नजदीक लेकर जाने वाली बातें यहाँ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सर आखिर में मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें समय दिया। फोनिक हमारी आपसे बहुत अच्छी चर्चा रही। निश्चित तौर पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो लिसनर्स हैं, इस बात का लाभ उठाएंगे अपनी जिंदगी में। अगर वो परिवर्तन ला सके तो हमारी चर्चा जरूर सफल होगी। सर
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे अपने स्टूडियो में निमंत्रण देने का, और आपका और आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर। सो लिसनर्स बताएगा जरूर ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, फिर कहूंगा प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए, और ट्रैफिक के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन करिए, क्योंकि घर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।

0: हाय, मैं उरण विजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। ये हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक, समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
5: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
4: बचपन हर गम से बेगाना होता है, गीत गाता चल का ये खूबसूरत गाना वाकई बहुत कुछ कहता है ये गाना। इस पिक्चर को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी यादें ताजा हो जाती हैं। और सच बात तो ये है कि बचपन, बच्चे, बच्चों के साथ हम खेलना चाहते हैं। और जब हम कोई बड़े व्यक्ति को देखते हैं और कहते हैं ना कि इसका बचपना अभी गया नहीं है, कोई नहीं चाहता कि किसी का कोई बचपना चला जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंसान खुश होता है और खुश रखने की कोशिश करता है अपने बचपने के ज़रिए। और जब हम बच्चों को देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्चों को देख के हमें खुशी मिलती है। कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन और इस आंदोलन की एक शुरुआत जो रही है 1980 में, बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना इन्होंने 1980 में की थी। इसी संबंध में बात करने के लिए मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। आप हैं सहना प्रियदर्शनी, जो कि प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं दिल्ली ऑफिस से, साथ ही साथ हैं अजीत सिंह रावत जो कि प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, आप भी दिल्ली से हैं। तो सहना जी, आपका सुनो शारदा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
6: जी धन्यवाद।
4: अजीत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
7: धन्यवाद गगन जी।
4: कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के बारे में मैं जानना चाहूंगा, इनके बारे में थोड़ा बहुत जो मैं रिसर्च कर पाया, वैसे हमने बहुत देखा है इनको, सुना है। एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध आप पक्षधर रहे हैं और ये हमेशा बच्चों के हक की बात करते हैं, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो। तो सबसे पहले सहना, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो फाउंडेशन है, ये जो संस्था है आपकी, किस तरीके से काम करती है?
6: तो ये फाउंडेशन जो है, हम लोग जो है बाल अधिकार को लेकर सबसे ज्यादा काम करते हैं। बाल अधिकार का सुनिश्चित होना जो है एक कैलाश सत्यार्थी जी का एक विजन रहा है हमेशा, कि अगर दुनिया या फिर आगे का फ्यूचर तभी वो सेफ है जब एक बच्चा जो है वो सेफ होगा, क्योंकि वही जो है आगे यूथ बनेगा और आगे वो काफी सारी चीजों में इन्वॉल्व होगा। तो उसी को लेते हुए कैलाश जी का ये विजन रहा है और उसी को हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसी पे काम करता है, जिसको लिए हमारा अलग अलग तरीके के काम है बच्चों के साथ, जिसमें एक है हमारा बाल मित्र ग्राम जो की शुरुआत हुई थी सुमेधा जी की तरफ से, जो की उनकी वाइफ है सर की, उन्होंने जो है ये शुरू किया था। हमारा सबसे पहले राजस्थान से ये शुरू किया है, उसी तरीके से अभी हमारे बीच जो है हम रूरल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा शोषण हो सकता है उस इलाकों में हम लोगों ने काम शुरू किया है वहाँ पे, जैसे कि झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हमारे अलग अलग जगह पे ये काम है। इसी तरीके से अलग अलग डाइवर्सिटी के साथ हम लोगों का काम रहा है, जहाँ पे हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं एक बच्चे को लेकर, जिसमें हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, हमारा लीगल एड सेशंस हैं, लीगल एड डिपार्टमेंट है, और साथ ही साथ में हमारे विक्टिम असिस्टेंस का डिपार्टमेंट है और साथ में कैंपेन्स का है। तो एक ओवरऑल तरीके से हम एक कम्युनिटी को एक अवेयरनेस के थ्रू जो है और साथ ही साथ में इंटरवेंशन के थ्रू जो है हम काम करते हैं ताकि हर बच्चा जो है सुरक्षित रहे। और इसी के साथ साथ एक और एस्पेक्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि बाल अधिकार के साथ साथ चाइल्ड लीडरशिप की बात है, कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को जो है एक बच्चा अगर बचपन से जानने और उसको फॉलो करने लगे तो वो आगे जाके एक अच्छा सिटीजन भी बन सकता है और वो जागरूक रहेगा। तो हमारे बाल मित्र ग्राम में जो है बाल पंचायत बनते हैं और इसी तरीके से हमारे बाकी अदर और प्रोग्राम्स है जहाँ पे बाल पंचायत बनते हैं, बच्चे जहाँ पे खुद नेतृत्व लेते हैं कि वो अपने इश्यूज और अपने जो भी इश्यूज है उसको लेकर आए।
4: कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि एक अवेयरनेस का प्रोग्राम आपकी संस्था करती है, लोगों के बीच में जाती है, बच्चों के हक की बातें होती हैं, और जिसमें कि आपने यहाँ जिक्र किया कि ट्रेनिंग सेशन होते हैं, एक कैंपेन आप लोग चलाते हैं, कानून की जानकारी भी उनको दी जाती है, बाल पंचायत आप लोग एक बनाकर चलते हैं जिसमें कि बच्चों को ही किसी को लीडर बनाया जाता है और उनके साथ बच्चे ही जुड़े हुए होते हैं। आपने बातों बातों में मुझे बताया कि सहना कि जहाँ जहाँ आपको लगता है कि इस एरिया में या इस क्षेत्र में बच्चों का शोषण हो रहा है, तो क्या कोई आपकी एक टीम है जो रिसर्च करती है कि हमें वहाँ जाना है, हमें पता चला है कि वहाँ बच्चों के जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है? अजीत, इस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूँगा।
7: हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला कि संगठन अवेयरनेस पे, जागरूकता पे काम करता है, लेकिन जागरूकता के साथ साथ ग्रास रूट इंटरवेंशन, और जब हमें ऐसी कोई लीड मिलती है या हम कोई ऐसी एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ हो सकता है कि बच्चे आश्रम में लिप्त हो, तो उसके लिए हमारी कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है बचपन बचाओ आंदोलन, तो उसका एक टीम है रेड एंड रेस्क्यू। तो जितने भी ये इंटरवेंशन होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के पुलिस विभाग हो गया, डीएम हो गया, उनके साथ मिलके रेड एंड रेस्क्यू का भी हम इंटरवेंशंस करते हैं शहरी क्षेत्रों में और सेमी अर्बन सेटअप में, इवन ग्रामीण क्षेत्रों में भी।
4: जी जी, वाकई बहुत अच्छी बात आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई कि आपकी जो संस्था है बचपन बचाओ आंदोलन, और ये आप हमें बहुत डिटेल में विस्तार से बता रहे हैं। साथ ही साथ जब मेरी सहना जी से बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि बाल मित्र ग्राम की भी शुरुआत, जो कि कैलाश सत्यार्थी जी की जो धर्म पत्नी है, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। कुछ और सवाल है, हम इसके बारे में आपसे जानेंगे जरूर, मगर यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।
8: नहीं नहीं राहुल, ये गाना मत गाओ।
9: गाने दीजिए ना, गाओ बेटे, यही गाना गाओ, गाओ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। एक ऐसा नाम जो कि भारत में तो जाना ही जाता है, विश्व पटल पर भी जाना जाता है, उनको पहचाना जाता है। उन्होंने काम ही ऐसा किया है कि हर घर घर में उनका नाम है। साथ ही साथ मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से आपको नवाजा गया था। आप हैं कैलाश सत्यार्थी जी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी संस्था के बारे में बातें हो रही हैं। और इसी संबंध में बात करने के लिए मेरे साथ दो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, उनके इस क्षेत्र से आते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर हैं सहना प्रियदर्शनी और अजीत सिंह रावत। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो बात करते हैं कि कुछ चैलेंजेस आते होंगे। जाहिर सी बात है कि किसी काम को आप धरातल पर लेकर जा रहे हैं, आसानी से तो हमें कुछ मिलता ही नहीं है। मैं उन चैलेंजेस के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि कितनी दुश्वारियाँ आपके सामने आती हैं, उन दुश्वारियों का किस तरीके से आप लोग सामना करते हैं। सहना प्लीज आप बताएं।
2: जी, जैसे कि आपने कहा कि कोई भी काम या फिर सोसाइटी में अगर किसी भी बदलाव की बात करें तो एक स्लो प्रोसेस, और साथ ही साथ में उसके अपने ही बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। उसी तरीके से बच्चों के साथ शोषण हो गया हो, ये काफ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और होता आ रहा है। तो उसको चैलेंज जब करते हैं, जैसे कि हम, मैंने इससे पहले बताया था कि हमारा एक टीम है रेड एंड रेस्क्यू का, जिसमें हम लोग बच्चों को अगर वो चाइल्ड लेबर में लिप्त हो तो उनको हम जो है वहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं उन जगहों को, और उन बच्चों को वहाँ से छुड़ा कर जो है हम उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में लेकर आते हैं। तो जहाँ पे भी, जब भी ये रेड एंड रेस्क्यू हम लोग करने का कोशिश करते हैं, जहाँ पे भी, वहाँ पे इतनी सारी चैलेंजेस आती है कि वहाँ का लोकल कम्युनिटी, अक्सर कई बार ऐसा हुआ है कि वो हाथ में पत्थर हो गया या फिर अन्य जो चीज़ें हैं जिसमें चोट पहुँचा सके, तो ऐसी भी सिचुएशन आई है जहाँ पे हम लोगों ने फेस किया है। उस दौरान उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे अदर प्रोग्राम है बाल मित्र ग्राम, जहाँ पे हमारा कोर है कि हम बच्चों को जो है एक माइका माइनिंग एरिया है झारखंड में, वहाँ पे हम काम करते हैं। बच्चे वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे वहाँ पे जगह होते हैं जहाँ से माइका निकाला जाता है, बच्चों को उसमें धकेला जाता है, और कई बार ऐसा हुआ है कि कई दफ़ा कि वो धस गया हो माइका माइन और बच्चे की जो है जान वहाँ पे चली गई हो। तो इन सब के अगेंस्ट जो है कम्युनिटी कभी भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं रखती है कि वो हम जो कह रहे हैं वो सही है। तो उस दौरान जो है हम रेगुलर काउंसलिंग सेशंस, रेगुलर रैपो बिल्डिंग और स्टेक होल्डर ग्रुप्स जो है, जो कि वहाँ पे जो कम्युनिटी में, जिस कम्युनिटी में काम कर रहे हैं वहाँ के हम इन्फ्लुएंशियल लोग हो गए या ग्राम प्रधान हो गए, ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी, टीचर्स, इन सबको हम साथ में रखते हैं ताकि हम एक होलिस्टिक, एक पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट चेंज कर पाएं जहाँ पे बच्चे को जो है सुरक्षित रख पाए। उसी तरीके से जब हम रेड एंड रेस्क्यू की बात करें तो हमारा लोकल गवर्नेंस जो है, पुलिस हो गई या SDM हो गए, उनको हम हमेशा साथ में रखते हैं।
0: जी, तो सहना अभी आपने बात की कि ट्रेनिंग सेशन की आप बात कर रहे हैं और रिहैबिलिटेशन सेंटर में जब आप बच्चे को लेकर जाते हैं, काउंसलिंग आप लोग करते हैं, तो यहाँ जो काउंसलिंग की बात आप मुझे बता रहे हैं, तो क्या हम बच्चों की काउंसलिंग कर रहे होते हैं या उसके माता पिता से भी हम लोग बात कर रहे होते हैं?
2: हमारी कोशिश ये रहती है कि पेरेंट्स से भी हमारी बातचीत हो, और क्योंकि बच्चे जो हैं उनकी भी साथ हमारी काउंसलिंग सेशंस होते हैं दोनों तरीके से। हम लोगों का ट्रेनिंग सेशन जो मैं कह रही थी, हमारा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो है वो अन्य हमारे जो वर्क से लोग आते हैं, जैसे वो पुलिस हो गई, टीचर्स हो गए, आंगनवाड़ी हो गए वर्कर्स, या फिर और ज़्यादा अधिक हमारे जो अधिकारी लोग होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग करती है ताकि वो लोग सशक्त हो पाए या ऐसे सिचुएशन आए तो वो उस चीज़ में हैंडल कर पाए और बच्चों के लिए जो है द बेस्ट चॉइस जो है वो उस तब ले सकते।
0: जी जी, अजीत, यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर पर आप बच्चों को ले जाते हैं, कभी कभी बच्चा ये चाहता है कि नहीं, मुझे मेरे घर ही जाना है, मुझे मेरे को काम ही करना है, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना नहीं है। कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है कि उसके जो माता पिता हैं वो भी चाह रहे होते हैं कि मेरा बच्चा कमा कर लेकर आए, क्योंकि वही एक कमाई का जरिया है। कुछ ऐसी विषम परिस्थितियाँ भी होती हैं, तो उस चैलेंजेस के बारे में मुझे बताएं कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम को आप लोग हैंडल करते हैं।
1: ये बहुत बेहतरीन आपने प्रश्न पूछा है, इसका मैं उत्तर आपको दो तरीके से दूंगा। पहला तो ये है कि जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर में टेम्परेरी, मतलब जैसे रेस्क्यू किया है और वो बच्चा किसी और राज्य का है, तो टेम्परेरी बेसिस में जो होम्स होते हैं या रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं उनमें रखा जाता है। उस दौरान बच्चे की एक काउंसलिंग सेशन किया जाता है जहाँ उसकी साइकोलॉजिकल उसको जाना जाता है और उसको भी तैयार किया जाता है कि वो मेन स्ट्रीम हो पाए, अपने घर जाए और शिक्षा, मतलब इनरोल हो स्कूल में, अपनी शिक्षा पूरी करे। और इस स्थिति में जब पेरेंट्स से मिला जाता है, उनसे काउंसलिंग की जाती है, और अगर ये लगता है कि पेरेंट्स उनको रिटेन नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि बच्चा उस वल्नरेबल सिचुएशन में है कि वो दोबारा चाइल्ड लेबर में जा सकता है, तो उस स्थिति में कुछ लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी होते हैं जहाँ बच्चा अप टू 17 एज तक रहता है, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग भी मिलती है और साथ में जो एक मेन स्ट्रीम एजुकेशन है उससे उसको कनेक्ट किया जाता है। दूसरी बात, आपने ये कहा कि इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि पेरेंट्स के पास आमदनी नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नोएडा में हम 10 कम्युनिटी और 10 स्कूलों में हम काम कर रहे हैं HCL फाउंडेशन के सपोर्ट के साथ। तो यहाँ हम जब बात करते हैं एक ग्रास रूट इंटरवेंशन की, तो ना हम सिर्फ बच्चों को फोकस करके हम अपना इंटरवेंशन करते हैं, बट उनके सराउंडिंग में जितने भी उनका सोशल प्राइमरी सर्कल है जिसमें उनके माता पिता आते हैं, उनके पड़ोसी आते हैं, आपके स्कूल के अध्यापक आते हैं, और साथ ही जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे CWC, JJB, इन सबको हम इंगेज करते हैं। तो एक तरफ तो हम बच्चे को ट्रेनिंग और वर्कशॉप के माध्यम से उनकी लीडरशिप डेवलपमेंट में काम करते हैं, और साथ ही जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनसे हम माता पिता को कनेक्ट करते हैं ताकि उनको कुछ रोजगार का अवसर भी मिले, और उन सिक्योरिटी स्कीम के तहत अगर कोई विडो है तो उनको विडो पेंशन मिलना शुरू हो जाए।
0: क्या बात है,
1: तो इसके साथ ही हम सस्टेनेबल इस प्रोग्राम को लेके चलते हैं ताकि बच्चा 18 साल तक अपना एजुकेशन पूरा करे और वो किसी भी तरह के लेबर में इन्वॉल्व ना हो।
0: जिस उद्देश्य के साथ आप लोग चल रहे हैं, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है।
1: धन्यवाद।
0: सो लिस्टनर्स, यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद ये जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है, आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सोनू शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। एक खूबसूरत शेर है, खूबसूरत लाइन है कि मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और ये कारवां बनता गया। आज ये जो कारवां है वाकई बहुत बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा वट वृक्ष हो चुका है ये फाउंडेशन कि जिसकी शाखाएं चारों तरफ फैली हुई हैं। इनकी शाखाओं पर बैठकर बचपन झूल रहा है, इनकी शाखाओं पर पकड़कर बचपन आगे बढ़ रहा है, यानी कि बचपन बचाओ आंदोलन का जो एक मुहिम थी वो सच होता हुआ नजर आ रहा है धरातल पर। कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे फाउंडेशंस होते हैं और सिर्फ लोग, मैं दोनों बात कर रहा हूँ, अजीत यहाँ पर और सहना भी जुड़ी हुई हैं, कि लोग कतराते भी हैं, लेकिन जब आप काम कर रहे हैं, काम दिख रहा है, सराहना हो रही है, गवर्नमेंट आपको अवार्ड से सम्मानित कर रही है, आपके ऊपर फिल्में बन रही हैं। मैं फिल्म का यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, एक झलकी फिल्म मैंने आप लोगों की देखी थी जो कि कैलाश सत्यार्थी जी के जीवन पर आधारित थी कि किस तरीके से उन्होंने काम किया, किस तरीके से वो लोगों के बीच में जाते हैं और जहां बाल मजदूरी हो रही है वहां से बच्चों का रेस्क्यू करना, उनको लोगों की धमकी भी मिलना, चोटें भी आई हैं। तो वाकई मैं आपके काम को सराहता हूं, सैल्यूट करता हूं। और जाते जाते बस मैं ये थोड़ा यही जानना चाहूँगा कि किस तरीके से अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहे, अपना करियर बनाना चाहे, कोई वॉलंटियर ही आपको अपनी सेवा देना चाहे, तो सहना आप मुझे बताएं किस तरीके से आपके साथ लोग जुड़ सकते हैं।
1: जी, जैसे कि अभी तक जो मैंने कहा कि हमारा मुहिम जो है या फिर हमारा ये पूरी कोशिश जो है, ये हम अकेले नहीं हैं। हम, जैसे आपने भी कहा, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग तरीके के काम हैं जिसको हम साथ मिलकर कर सकते हैं। जैसे बच्चे हैं या फिर स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे साथ साथ में जुड़ के हमारे जो बाल मित्र ग्राम हो गया, या फिर हमारा जो काम अभी नोएडा में है हमारा, या फिर हमारे दिल्ली क्षेत्र में जो काम है, उन सब में वो आके अपनी तरफ से अवेयरनेस जनरेशन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट कर सकते हैं, या फिर बच्चों को जो है सशक्त कर सकते हैं उनके राइट्स के ऊपर। तो ऐसे काफ़ी सारे काम हैं जिसमें वो आके ज़रूर कर सकते हैं उसमें।
0: जी अजीत, आप मुझे बताएं कि अगर सपोज करिए कि बच्चे जुड़ गए, सहना ने जो बात हमें बताई, मैं उससे थोड़ा आगे बात कर लेता हूँ, किसी का इंटरेस्ट जाग गया कि मुझे समाज सेवा करनी ही करनी है, और जाहिर सी बात है कि मेरी फैमिली है, मुझे भी रुपयों पैसों की आवश्यकता होती है क्योंकि रुपये पैसों से ही आखिर में घर चलता है, तो करियर की मैं बात आपसे जानना चाहता हूँ, ग्रोथ की बात आपसे जानना चाहता हूँ।
2: आपके इस प्रश्न के उत्तर को मैं दो आयामों से दूंगा। एक है कि अगर किसी को लगता है कि किसी बच्चे को वो देखता है और वो चाहता है कि उसको प्रोटेक्ट करे, लेकिन उसके पास टूल्स नहीं है, उसको समझ नहीं आता कि मैं कैसे कर पाऊँ, तो पहले तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको इस तरीके से देना चाहूँगा कि हमें कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं। एक 1098 हेल्पलाइन नंबर है चाइल्ड लाइन का। आप अगर कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप उस हेल्पलाइन नंबर में कॉल कर सकते हैं। और साथ ही संगठन का बचपन बचाओ आंदोलन का हेल्पलाइन नंबर है 1800102722। आप इन दो हेल्पलाइन का मदद ले सकते हैं, और अगर आपको कोई बच्चा किसी विषम परिस्थिति में या अकेले आपको दिखता है तो आप इसमें कॉल कर सकते हैं। आपका एक कॉल भी उस बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, ये आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा।
0: बहुत
2: खूब। और साथ ही अगर आपका दूसरा प्रश्न था कि कैसे आप अपने करियर के शुरुआती दौर में कोई बच्चा है और वो चाहता है कि किसी कॉज से जुड़े और कुछ सीखने को उसे मिले और भविष्य में उसके कुछ आयाम खुले, तो आप एज अ वॉलेंटियर कनेक्ट हो सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैलाश सत्यार्थी जी और संगठन की अप्रोच रही है और सोच रही है कि कैसे पूरे विश्व को और समाज को चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जाए, बच्चे को कम स्तर ना देखा जाए, उसके साथ एक दोस्ताना हम व्यवहार रखें, उसकी बातें भी सुने और ना कि उसमें हर चीज थोपे। तो उसके लिए हमारे पूरे संगठन का एक झुकाव रहा है यूथ में, तो अधिक से अधिक यूथ एज अ वॉलेंटियर, एज ए इंटर्न, और अगर उनका शिक्षा कंप्लीट हो चुकी है तो वो हमारे विभिन्न विभागों के साथ जुड़ सकता है। तो उसका एक प्रोसेस है, आप हमारी वेबसाइट के करियर वाले सेक्शन में जाके अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही एज अ वॉलंटियर आप कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिस तरीके से आप दोनों ने अपने करियर की यहाँ शुरुआत की, मैं समझता हूँ कि आप एक समाज सेवा ही कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के घर में एक उजाला ला रहे हैं, किसी बिछड़े हुए बच्चे को उसकी माँ से आप लोग मिला रहे हैं, उसको आप शिक्षित कर रहे हैं, एक हेल्दी वातावरण आप लोग दे रहे हैं। तो आप दोनों को, आपकी संस्था को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: धन्यवाद गगन जी।
0: सो लिसनर्स, मेरे साथ जुड़ी रही सहना प्रियदर्शनी, आप थे अजीत सिंह रावत जो कि दोनों ही प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं और जो कि कैलाश सत्यार्थी का जो फाउंडेशन है उस फाउंडेशन से आप लोग जुड़े हुए हैं। तो ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। और कहने का आशय यही है कि जिंदगी वाकई बहुत बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। बहुत बुरा लगता है जब हम देखते हैं कि किसी बच्चे को हम प्रताड़ित कर रहे होते हैं, उसको परेशान कर रहे होते हैं, हम ट्रैफिक सिग्नल पर जब हम देखते हैं कि बच्चे के हाथ में कटोरा होता है जबकि उसके हाथ में कागज कलम होनी चाहिए थी, वो पढ़ता लिखता आगे बढ़ सकता था। लेकिन जब ये संस्था, इसी तरीके की संस्थाएं काम कर रही होती हैं, तो निश्चित तौर पर एक खुशी मिलती है, एक अच्छा वातावरण ये लोग क्रिएट कर रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत आप दोनों को धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। नमस्कार।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: Bingo on Malaysia card, the end. बुखार का दी एंड। ये
1: तारा तुम कर क्या रही हो? तारा
0: तारा लड़ रही है अब्बा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
1: ओह।

0: अक्षरों में कैसे करना है बात, ये बताएंगे अगली बार।
1: तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार। हो जाओ तैयार, आज मच्छरों पे होगा जम के वार।
0: हेलो, मैं हूँ रिपोर्टर तारा और आज हम बात करेंगे एक खास मेहमान से।

0: देखा जाएगा मिस मच्छर, पर सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम हमें काटती क्यों हो?
1: क्योंकि हमें अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और वो हमें मिलता है तुम्हारे खून से।
0: ये बात तो रिपोर्टर तारा को पता ही नहीं थी।
1: तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि हम एक बार में 100 से 400 अंडे तक देते हैं। हम अपनी पूरी सेना बना लेते हैं और तुम बच्चों और गर्भवती महिलाओं को हमसे सबसे ज्यादा खतरा है।
0: ये बात है तो हम बच्ची भी मच्छरों से भिशुम भिशुम लड़ने के लिए तैयार है।
1: क्या कहा तुमने?
0: Kids want to know, मिस मच्छर, कि अब तुम्हारा क्या प्लान है?
1: अब तुम्हारे घर और बाहर या आसपास जहाँ भी ठहरा हुआ पानी होगा, मैं वहाँ अपना घर बना लूंगी और बहुत सारे अंडे दूंगी, बहुत सारे अंडे दूंगी।
0: आहा, मिस मच्छर को नहीं पता कि तारा ने पानी जमा होने वाली हर जगह को पहले से ही साफ कर दिया है।

0: अभी जमाओ पानी, कर दो उसकी सफाई, फिर मच्छर और बीमारियों को बाय बाय।
1: अगली बार हम सीखेंगे मच्छरों से बचने के और उपाय।
0: फिलहाल रिपोर्टर तारा और अप्पा की ओर से
2: गुड बाय।

को कब ये नहीं बचा पाएंगे अपने आप को।

मैं जाऊंगी उनके पास जो नहीं है तारा की तरह तैयार।

0: अगली बार हम सीखेंगे कि क्या करना है अगर आ जाए बुखार।
1: तब तक रहो तारा की तरह तैयार। बाय बाय।
2: हेलो मेरे बेस्ट फ्रेंड टिंकू।
3: हेलो मेरे प्यारे दोस्त तारा।
2: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
3: ओ मुझे बुखार हो गया है।
2: अप्पा, टिंकू को बुखार हो गया है। तो डॉक्टर ने क्या कहा टिंकू, क्यों हुआ बुखार?
3: पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
2: ओ नो नो नो नो नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
3: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूं तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: आ जल्दी आओ अब्बा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाए।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार, और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती, मैं हारी, तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों, अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी। तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
3: टीम तारा है तैयार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

मेहरबा ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो सिंगर म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय आदित्य रेखाड़ी म्यूजिक रावेटर मेहरबा ओनली ऑन सुरु शारदा 90.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: द वर्ल्ड इज हियर।
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना।
1: पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: चोरी चोरी देख

0: लेकिन दोस्त अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीवी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
1: जी
0: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
1: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
0: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपका दोस्त शशि कपूर। लेकिन आज सच कहूं तो आवाज़ में जोश कम और गर्मी ज़्यादा है। अभी मैं स्टूडियो में बैठा हूं, एसी चल

0: रहा है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंगीठी के सामने बैठा हूं। सुबह जब घर से निकला तो लगा कि आज का दिन थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा लगा कि आज तो हालत खराब होने वाली है। अभी घड़ी में सिर्फ 10 बजे हैं और लग रहा है जैसे दोपहर सिर पर खड़ी हो। दोस्तों, पहले गर्मी सिर्फ मौसम हुआ करती थी, लेकिन अब ये जैसे एक मुसीबत बन गई है। समझ नहीं आता कि ये सिर्फ गर्मी है या कुछ और भी गड़बड़ चल रही है हमारे आसपास। भाई, इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में है आपकी जानी पहचानी टीकन देवी जी। तो सबसे पहले टीकन देवी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और सच में गर्मी तो बहुत है, लेकिन आज ये बाबू इतनी घबराहट क्यों? गर्मी में पसीना तो आएगा ही, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? लेकिन आपकी बात भी गलत नहीं है, इस बार की गर्मी वाकई कुछ ज़्यादा तेज़ है। और जो आप महसूस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपकी परेशानी नहीं बल्कि पूरे देश के लोग यही महसूस कर रहे हैं।
0: लेकिन टीकन भाभी, अब आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि ये सिर्फ गर्मी बढ़ गई है वाली बात नहीं है, इसके पीछे कुछ बड़ा चल रहा है। लेकिन एक बात अब भी समझ नहीं आ रही, क्या ये सब सिर्फ मौसम का उतार चढ़ाव है या फिर हम इंसानों की भी इसमें कोई भूमिका है? सच बताऊं, अब ये गर्मी डराने लगी है, पहले जैसी नहीं रही।
1: देखिए आजी बाबू, आपने सवाल बिल्कुल सही पूछा है। असल में इसके पीछे कई परतें हैं। सबसे पहले तो प्रकृति का अपना एक सिस्टम होता है। जब उत्तर पश्चिम भारत, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, तो वह हवा को ऊपर उठने नहीं देता बल्कि नीचे की तरफ दबा देता है। अब होता यह है कि जो गर्म हवा है वो जमीन के पास ही फंस जाती है, बाहर निकल नहीं पाती। और जब ऊपर से बादल भी नहीं होते, बारिश नहीं होती, तो सूरज की किरणें सीधे जमीन को तपाती रहती हैं, जमीन सूख जाती है, उसमें नमी नहीं रहती, फिर वो गर्मी को और तेजी से पकड़ती है, जैसे तवा गर्म होता जाता है।
0: ओहो, तो इसका मतलब ये है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ धूप नहीं है बल्कि ऊपर आसमान से लेकर नीचे जमीन तक सब कुछ मिलाकर ये गर्मी बना रहे हैं।
1: हाँ, ठीक कहा आपने, लेकिन इस मामले की गंभीरता को भी समझना होगा। ये एक पूरा सिस्टम है, हवा, जमीन, सूरज और बारिश सब मिलकर काम करते हैं, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसमें एक बहुत बड़ा कारण जुड़ चुका है, जलवायु परिवर्तन। अब जो हम देख रहे हैं, जैसे गर्मी का जल्दी आना, लंबे समय तक टिका रहना और पहले से कहीं ज़्यादा तेज हो जाना, ये सब उसी का असर है। पहले लू मई जून में चला करती थी, लेकिन अब तो मार्च से ही वो अपने तेवर दिखाने शुरू कर देती हैं।
0: मतलब ये सिर्फ आज की परेशानी नहीं है, ये आने वाले समय की एक चेतावनी है और शायद हालात और भी कठिन हो सकते हैं।
1: बिल्कुल, ये तो सच्चाई है और इसे मानना भी होगा। और सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सबसे कम सुरक्षित हैं, जैसे खेत में काम करने वाले किसान, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले जो पूरे दिन धूप में रहते हैं, साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोग, उनके लिए तो गर्मी और भी खतरनाक हो जाती है।
0: तो टीकन भाभी, अब ये बताइए, ये लू क्या होती है? लोग अक्सर कहते हैं कि लू लग गई, लेकिन असल में शरीर के अंदर क्या होता है?
1: आपका सवाल बहुत अहम है। और सुनो, शादा स्मार्ट के साथ मिलकर एक कार्यक्रम चला रहा है, सेहत सही लाभ गई। उसमें हम ऐसे ही मुद्दों पर अपने श्रोताओं से जोड़ते हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं। आज हमारा जो विषय है वो है हीट वेव, यानी हम गर्मी से कैसे बचें, गर्मी में हमें क्या क्या चीज़ें समझनी चाहिए। देखिए, लू कोई साधारण गर्मी नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जब शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। आमतौर पर हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो शरीर में पानी की कमी होनी शुरू हो जाती है, पसीना आना भी बंद हो जाता है, उस समय शरीर का कूलिंग सिस्टम बिल्कुल फेल हो जाता है और यहीं से लू लगने की शुरुआत होती है। इसके लक्षणों में तेज सिरदर्द, चक्कर, उल्टी, त्वचा का सूख जाना, तेज बुखार, कभी कभी बेहोशी जैसी चीजें भी शामिल होती हैं।
0: मतलब ये तो बहुत गंभीर बात है, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है?
1: हाँ बिल्कुल, ये जानलेवा हो सकता है अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए। तो यही लू हीट स्ट्रोक में बदल सकती है, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ सकता है। कई बार इसमें व्यक्ति बेहोश हो जाता है, बोलने में दिक्कत होती है और शरीर के कुछ हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए लू को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ गर्मी लगना नहीं है बल्कि शरीर के लिए गंभीर खतरा भी है।
0: तो भाभी, इससे बचने का तरीका क्या है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये खतरा सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि हम सब के लिए है। घर में हो या बाहर, हर कोई इससे प्रभावित हो सकता है।
1: हाँ देखिए, घबराने से ज़्यादा ज़रूरी है किसी चीज़ को समझना और समझदारी से काम लेना। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी उपाय है पानी। हमें बार बार पानी पीना चाहिए, भले ही प्यास लगे या ना लगे। कई बार हम इंतज़ार करते हैं कि प्यास लगेगी तभी पानी पिएंगे, लेकिन तब तक शरीर में पानी की कमी शुरू हो चुकी होती है। इसलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके हर कुछ देर में पानी पीते रहें। इसके साथ ही छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी, ये सब शरीर को ठंडा रखने में बेहद मदद करते हैं और कमजोरी भी आने नहीं देते।
0: टीकन देवी जी, आपने पानी, छाछ, नींबू पानी की बात तो बताई, लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि ORS भी बहुत ज़रूरी होता है। ये ORS क्या होता है और कब लेना चाहिए?
1: देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये सब हमारे श्रोताओं को जानना बेहद ज़रूरी है। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये एक ऐसा घोल होता है जो शरीर में पानी की कमी के साथ साथ नमक और जरूरी मिनरल्स की कमी को भी पूरा करता है। जब हम बहुत पसीना बहाते हैं तो सिर्फ पानी ही नहीं, शरीर से नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। ऐसे में पानी पीना काफ़ी नहीं होता। उस स्थिति में ORS बेहद मदद करता है, जो कि शरीर को ठंडा रखता है।
0: आपके कहने का मतलब ये सिर्फ बीमारी में नहीं बल्कि गर्मी में भी ORS काम आता है?
1: बिल्कुल, सिर्फ बीमारी में नहीं गर्मी में भी ORS काम आता है, बात बिल्कुल सही है। अगर कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है, बार बार पसीना आ रहा है, कमजोरी लग रही है या चक्का जैसा महसूस हो रहा है, तो ORS बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके छोटे छोटे घूंट हमें पीने चाहिए। अगर घर में ORS का पैकेट ना भी हो तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, घर पर भी घोल बनाया जा सकता है। 1 लीटर साफ पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर, ये भी शरीर को संभालने में मदद करते हैं।
0: वाह, मतलब ये तो बहुत आसान है और हर घर में बन सकता है। सच में छोटी छोटी जानकारी कितनी बड़ी मदद कर सकती है।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी में पानी के साथ ORS दोनों ज़रूरी डोज हैं। अगर समय पे दोनों शरीर को मिल जाएं तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।
0: बिल्कुल, ये तो सही बात है। अक्सर हम काम में लगे रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं, लेकिन क्या बाहर जाने से भी बचना चाहिए?
1: हाँ, हमें बाहर जाने से बचना चाहिए बिल्कुल, खासकर दिन के सबसे गर्म समय में, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर निकलने में जितना हो सके बचें। अगर बहुत ज़रूरी है तो तभी बाहर जाएं और जब भी निकले सिर को ढक कर निकलें, चाहे गमछा हो, टोपी हो, छाता हो। हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने ताकि शरीर को हवा मिलती रहे और गर्मी कम लगे।
0: बिल्कुल, तो ये तो बात आपने बताई कि किस तरह से हमें बाहर जाना है, कब जाना है और कैसे कपड़े पहनकर बाहर निकलना है। अब बात आती है खाने पीने की, तो खाने पीने में इस मौसम में क्या बदलाव करना चाहिए, क्योंकि गर्मी में खाना भी कभी कभी भारी लगने लगता है।
1: हाँ, गर्मी में खाना कभी कभी हमें भारी लगने लगता है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। गर्मी में हमें अपने शरीर पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। भारी, तला भुना, ज़्यादा मसालेदार खाना शरीर में और गर्मी पैदा करता है, इसलिए इसे कम करना चाहिए। इसके बजाय हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाएं। साथ ही ऐसे फल और सब्जियाँ लें जिनमें ज़्यादा पानी की मात्रा हो, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, संतरा। ये सिर्फ ना शरीर को ठंडा रखते हैं बल्कि पानी की कमी भी नहीं होने देते।
0: बिल्कुल, तो भाभी ये तो हम अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दिन भर बाहर काम करते हैं जैसे मजदूर, किसान, रिक्शा चलाने वाले, उनके लिए तो ये और भी मुश्किल होगा, उनका क्या?
1: देखिए, आपने हमारे श्रोताओं को बताने के लिए बेहद ज़रूरी बात उठाई है और इस विषय पर बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों के लिए सबसे अहम है कि वे अपने काम को थोड़ा बदलें, कोशिश करें कि सुबह जल्दी काम शुरू करें और दोपहर की तेज़ धूप में आराम करें, बीच बीच में पानी पीते रहें और जहां छांव मिले वहां थोड़ी देर रुककर शरीर को ठंडा कर लें। लेकिन सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के लिए पानी और छांव की व्यवस्था करें। अगर आप अपने आसपास किसी को धूप में परेशान देखते हैं तो कम से कम पानी देने की कोशिश तो कर ही सकते हैं।
0: बिल्कुल, मतलब हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि हमें अपने आसपास के लोगों की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या सबकी है।
1: बिल्कुल, खास तौर पर हमारे बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं। जो लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं उनका विशेष ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये जल्दी लू की चपेट में आ सकते हैं।
0: और अगर किसी को सच में लू लग जाए तो उस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या करें।
1: हाँ, ऐसी स्थिति में तो सबसे पहले उस व्यक्ति को तुरंत धूप से हटाकर छांव या ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए। उसके शरीर पर ठंडा पानी डालें या गीला कपड़ा रखें ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। अगर पंखा या हवा का इंतज़ाम हो सके तो अच्छा है। और सबसे ज़रूरी बात, जितना जल्दी हो सके उसे डॉक्टर या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि देरी बेहद खतरनाक हो सकती है, इसीलिए हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है।
0: टीकन भाभी, एक और बात बताइए, ये गर्मी तो हमें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन क्या जानवर भी इससे उतने ही प्रभावित होते हैं जैसे हम होते हैं?
1: हाँ, सही सवाल है और मैं आपको बताऊंगी कि सच में जानवर भी प्रभावित होते हैं और उतने ही होते हैं जितने कि हम होते हैं, बल्कि कई बार तो हमसे भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये अपनी परेशानी किसी को बता नहीं पाते। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, यहाँ तक कि पक्षी भी इस गर्मी से प्रभावित होते हैं। उन्हें भी ठंडी जगह, छांव और साफ पानी की ज़रूरत होती है। अगर उन्हें ये सब ना मिले तो उन्हें भी हीट स्ट्रेस या डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसलिए गर्मी में हम उनके लिए पानी और छांव का इंतज़ाम कर सकते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी भी यही है। तो सुनो शारदा सामुदायिक रेडियो के माध्यम से मैं अपने सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने घरों के बाहर पक्षियों के लिए मिट्टी के बर्तन या जो भी ज़रूरी चीज़ें आपके पास हों उसमें स्वच्छ पानी रखें, उनके लिए दाना रखें, पेड़ ना काटें। छांव में प्रकृति सांस लेती है और पक्षियों का बसेरा होता है।
0: तो टीकन भाभी, आपके कहने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उन बेजुबान जानवरों की भी चिंता करनी चाहिए जो बोल नहीं सकते, लेकिन क्या जानवर भी इस गर्मी को उतना ही झेलते हैं जितना हम?
1: बिल्कुल, कई बार तो उससे भी ज़्यादा, क्योंकि उनके पास अपने बचाव के साधन नहीं होते। अगर हम अपने घर के बाहर या आंगन में एक बर्तन में पानी भरकर रख दें तो किसी पक्षी या जानवर के लिए वो जीवन दान तक बन सकता है। ये छोटा सा काम है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है और यही असली इंसानियत भी है।
0: तो साथियों, आज की इस बातचीत ने हमें एक बहुत ज़रूरी बात समझाई है, गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं रही है, ये एक चुनौती बन चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ी समझदारी दिखाएं, तो इससे बचना बिल्कुल संभव है। हमें बस अपनी रोज़मर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करने हैं, जैसे समय समय पर पानी पीना, तेज़ धूप से बचना, हल्के और सूती कपड़े पहनना और अपने शरीर को आराम देना, और सबसे ज़रूरी अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चा हो, कोई मजदूर हो या फिर कोई बेजुबान जानवर, क्योंकि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना ही असली ताकत है। याद रखिए, पानी पिए बार बार, लू से रहे हम सब तैयार। और एक और बात, धूप से बचाव है ज़रूरी, तभी रहेगी सेहत पूरी। टीकन भाभी, आपकी बातें सुनकर एक बात समझ में आ रही है कि अगर हम लापरवाही करें तो ये गर्मी बहुत खतरनाक हो सकती है। क्या आपने ऐसा कोई मामला देखा है जहां लापरवाही भारी पड़ गई हो?
1: हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है। ये बात मैं बहुत भारी दिल से बता रही हूँ। हमारे ही पास के गांव में पिछले साल एक छोटा बच्चा था, सिर्फ 5 साल का। उसके माता पिता दोनों खेत में काम करते थे। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी, लेकिन वो बच्चे को भी साथ ले गए। धूप तेज थी तो बच्चे को बार बार प्यास लग रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर में पानी दे देंगे। लेकिन धीरे धीरे बच्चा चुप हो गया, खेलना बंद कर दिया। फिर उसे चक्कर आने लगी। जब तक वो समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने तक बच्चा बेहोश हो चुका था और डॉक्टर ने बताया कि उसे गंभीर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक हुआ है।
0: ये तो बहुत दुखद है भाभी।
1: हाँ, सबसे दुख की बात तो यह है कि ये रोका जा सकता था अगर समय पर पानी दिया जाता, उसे धूप से बचाया जाता। यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं कि गर्मी को हल्के में मत लीजिए, खासकर बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं। समय समय पर पानी पीते रहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन पानी की कमी के कारण मुख्य रूप से होता है।
0: तो साथियों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है। एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम की जान ले सकती है। इसलिए आज से ही तय कीजिए अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और खुद को इस गर्मी से बचाना है।
1: हाँ बिल्कुल, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और खुद को इस गर्मी से बचाना है। हमें थोड़े थोड़े समय पर पानी पीना है और लू की चपेट में नहीं आना है। सुनो शारदा स्मार्ट के साथ मिलकर यही मुहिम चला रहा है कि हम सब लोग स्वस्थ रहें और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि लू को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ गर्म हवा नहीं है, ये शरीर पर सीधा हमला करती है। अगर हम समय रहते सावधान हो जाएं और खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जागरूक रहना ही आज सबसे बड़ा उपाय है।
0: बिल्कुल, इसी के साथ अब हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं संपन्न करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं।
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। तो मिलकर बोलते हैं, सेहत सही तो लाभ कही। मेरे साथ हैं शशि कपूर जी, जो कि आजे की भूमिका में हैं, और मैं हूं दीपाली, जो कि टीकन भाभी की भूमिका में हैं। हम दोनों मिलकर आपसे विदा लेते हैं स्मार्ट के कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही के अंतर्गत। एक नए विषय और नई ऊर्जा और नई जानकारी के साथ हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।
0: और अब दोस्तों, समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे इसी शो में, यानी कि सेहत सही लाभ कई में, एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन याद रखिए, पानी पीते रहिए, छाव में रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए, क्योंकि सेहत सही तो लाभ कई।
2: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
3: जी
2: प्लीज कैरी ऑन।
3: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
2: तो मतलब इस क्लास का सार है, लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
3: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
2: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़े। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है, तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा विषय है डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है, जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है। लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है, जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान। किसान मित्रों, आज के कार्यक्रम खेत खलियान में हम सबसे पहले बात करेंगे बागवानी की। जी हां, खेती में बागवानी तेजी से उभरता हुआ कृषि व्यवसाय है और इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना है। जो हमारे युवा साथी रोजगार की तलाश में हैं, वो बागवानी के क्षेत्र में बेहतर रोजगार हासिल कर सकते हैं। और किसान मित्रों, आपको बता दें, जैसा आप तो जानते ही होंगे, बागवानी इसे एक बार लगा देने से कई सालों तक मुनाफा आप ले सकते हैं। बागवानी अपने अंदर तमाम संभावनाएं समेटे हुए है, जो किसानों के लिए भविष्य में सुनहरे आय का एक साधन बन सकती है। किसान मित्रों, फल सब्जी की मांग बाजार में साल भर रहती है। पारंपरिक फसलों में बढ़ते नुकसान और कम होते मुनाफे के मद्देनजर अब हमारे किसान मित्र बागवानी की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप भी बढ़ सकते हैं अन्य किसानों की तरह। और किसान मित्रों, वर्तमान समय में देश के बहुत से ऐसे हमारे किसान भाई हैं जो बागवानी करके अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। किसान मित्रों, आपको बता दें कि खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा बागवानी में अधिक आय के साथ ही विभिन्न प्रकार के फायदे होते हैं। खाद्यान्न फसलों को उगाने के लिए पर्याप्त भूमि की आवश्यकता होती है, जबकि बागवानी का कार्य आप कम भूमि पर आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए बागवानी फसलों की सहायता से हमारे किसान भाई अपनी कम भूमि पर भी अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और किसान मित्रों, आपको एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बता दें कि बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक मिशन भी चला रही है, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन। इस मिशन के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को बागवानी फसलों के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वैसे शहरों में सब्जी की खेती एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसमें रोजगार के अवसरों की वृद्धि हो रही है। शहरी कृषि में सब्जी की खेती से न केवल शहरों में ताजी सब्जियों की आपूर्ति होती है, बल्कि ये रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। किसान मित्रों, अब आप जान ही गए होंगे कि बागवानी फसलों को उगाने से हम कितनी जल्दी लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, आप जरूर बागवानी करें ताकि आपका कृषि में जो खर्चा आता है वो कम हो और आपको लाभ ज्यादा हो। किसान मित्रों, ये तो बात रही बागवानी फसलों की कि उनसे किस तरह से हम कम पैसा लगा करके अधिक लाभ ले सकते हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी, कलाकार हैं सुनील चौहान और उनके साथी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान और उनके साथियों से ये देशभक्ति रागनी। साथियों, जब भी हम देशभक्ति रागनी सुनते हैं या देशभक्ति गीत सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भावना जागृत होती है कि हमें भी अपने महान क्रांतिकारियों की तरह, जो देश के लिए मर मिट गए, अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते देश के लिए दे गए, तो हमको भी ऐसा लगता है कि हमें भी कुछ ना कुछ अपने देश के लिए करना चाहिए और हमें ये सोचना भी चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो आप जो भी काम करते हैं उसे आप मन से कीजिएगा, निष्ठा से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, तो ये भी देश की सच्ची सेवा होगी। किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार अचानक होने वाली भारी बारिश, सूखा, तूफान या किसी अन्य तरह की प्राकृतिक आपदा से फसलों के खराब होने का खतरा बना रहता है और इसका पूरा नुकसान हमारे किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। इन्हीं अनिश्चितताओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसानों से हमारे किसान भाइयों को बचाने के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रही है। किसान मित्रों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बहुत कम पैसे देकर आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। बीमा कवरेज के तहत अगर बीमित फसल नष्ट हो जाती है तो इसकी पूरी भरपाई का जिम्मा बीमा कंपनी का होता है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिए हमारे किसान भाई बैंक में जाके अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। बस इसके लिए उन्हें बैंक में जाकर एक फॉर्म भरना पड़ता है और फिर उनके फसलों का बीमा हो जाता है। और अब वो किसान मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि अगर प्राकृतिक आपदा से आपकी फसल नष्ट हो जाए तो उसका क्लेम आपको कैसे करना पड़ेगा, कहाँ करना पड़ेगा, तो ये बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं रविंद्र खालौर।

0: किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रविंद्र खालोर से ये उपदेश, और इस उपदेश में रविंद्र खालोर कह रहे थे कि हमें किसी के साथ धोखा नहीं देना चाहिए, और जो लोग किसी को भी धोखा देते हैं उनका अंत अच्छा नहीं होता है, और उनको अपने पाप कर्मों का फल एक ना एक दिन भोगना पड़ता है। और किसान मित्रों, इस उपदेश से पहले हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, और हमने बताया था कि आप कैसे अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं, कहां करवा सकते हैं। अब बात आती है कि आपने अपनी फसल का बीमा तो करवा लिया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई और आपकी फसल बर्बाद हो गई, तो अब आपको उसका मुआवजा कैसे मिले। तो किसान मित्रों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम लेने के लिए आपको सबसे पहले 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग को फसल खराब होने की जानकारी देनी होती है। इसके बाद आवेदन करना होता है, फॉर्म में फसल खराब होने का कारण, कौन सी फसल बोई गई थी, कितने क्षेत्र में फसल बर्बाद हुई है, इन सब बातों का ब्यौरा देना होता है, और साथ ही आपको जमीन से संबंधित जानकारी भी देनी होती है। इसके अलावा बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी की जरूरत होती है। आवेदन करने के कुछ दिनों के बाद बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और कृषि विभाग के कर्मचारी आपके खेत का निरीक्षण करते हैं और फिर नुकसान का आकलन करते हैं, और सब कुछ सही पाए जाने पर किसान के बैंक खाते में बीमा का पूरा क्लेम डाल दिया जाता है। तो किसान मित्रों, बहुत ही अच्छी योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो आप अपनी फसल का जरूर बीमा कराएं। किसान मित्रों, ये तो आपने जाना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी, कलाकार हैं कोशिंदर खदाना।
1: बाकी सब पर।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कोशिंदर खदाना से ये देशभक्ति रागनी, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आपसे अनुमति ली जाए। इसी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराए। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है, जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है। सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से उसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
2: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये कैसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वही एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
3: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: 10 से 19 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निशुल्क उपलब्ध। एनीमिया फ्री इंडिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: दोस्तों, समय समय की बात है, समय समय की बात है, समय समय का फेर, और समय बदलते सज्जनों लगे न कोई देर। मेहरबानो सत्यवान कि प्राण लेने के लिए यम के दूत आए, लेकिन सावित्री के तेज से वापस यमपुरी चले गए। महाराज उसके ललाट से वो ज्वाला दहक रही है कि जिसके आगे हमारी एक न चली। मेहरबानो यमराज आश्चर्य में पड़ गए, वो कौन वीर है यमलोक में? मेरे मेहरबानों सत्यवान आखिरी बातें अपनी ब्याही से कर रहा था। मेरे मरने के बाद अगर तुझे मुझसे प्यार है तो सती हो जाना और स्वर्ग लोक में आके मेल मिलाना, और सती ना होना तो मेरे मरने के बाद जप गायत्री मंत्र कराना, गौ माता का दूध जप में अवश्य रखना। मेरे मेहरबानों इतने ही में यमराज क्यों नहीं आ जाते हैं? सत्यवान के प्राण लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों सावित्री हाथ जोड़ के यमराज के सामने खड़ी हो जाती है, महाराज मुझे विधवा करके मत जाओ।

0: हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800 11 66 66। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। ओले ओले ओले ओ शोनक। हेलो, कौन?
1: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर। आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
2: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
1: जल्द मिलते हैं।
0: हेलो हेलो हेलो,
3: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
0: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: अरे भैया रामू।
2: हाँ भैया श्यामू।
1: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
2: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
1: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
2: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
3: तो अभी चलो।
4: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 3 की ध्वनि शाला में।
2: प्यारे बच्चों, आपको उषा दीदी का प्यार भरा नमस्कार और इस नमस्कार के साथ ढेर सारा प्यार, लाड़ और दुलार। आपकी मम्मी भी आपको खूब लाड़ लड़ाती होंगी, खूब प्यार करती होंगी। पापा भी आपको खूब प्यार करते होंगे और दादी और दादा की तो बस कुछ पूछो ही मत। आप शरारतें करते भी होंगे तो दादा दादी आपकी शरारतों पर पर्दा डाल देते होंगे कि नहीं, ये तो मोनू ने किया ही नहीं। अरे नहीं भाई, झुमकी कहाँ ये शरारतें कर सकती है, बेचारी इतनी सीधी सादी सी तो है। मुझे मालूम है कि आप सभी बच्चे खूब शरारतें करते हैं। शरारतें करना अच्छी बात है, लेकिन तब तक जब तक किसी को कोई नुकसान न पहुँचे। शाबाश। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं आपको, जिसका शीर्षक है चांद वाली अम्मा। अब आप सोचिए कि इस कहानी में क्या होगा। एक संकेत तो मैंने आपको कार्यक्रम के शुरू में ही दे दिया, यानी शरारत। इसमें कोई है जो खूब शरारत करता है और इसमें कोई है जिसके साथ शरारत की जाती है, लेकिन कौन? क्या चांद करता है शरारतें, या फिर चांद वाली अम्मा शरारत करती है? आप कहेंगे अम्मा और शरारतें? बाबा रे, ऐसी बात तो उषा दीदी ही कह सकती हैं, हम नहीं कह सकते। अम्मा को कहें कि वो शरारत करती हैं तो अम्मा तो हमारी खूब कुटाई कर दे। तो चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि अम्मा भी शरारत नहीं करती, लेकिन बच्चों ये तो हो सकता है कि अम्मा के साथ कोई शरारत करता हो। हाँ, ये हो सकता है। तो आइए हम सुनते हैं कहानी जिसका शीर्षक है चांद वाली अम्मा। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था, घर का काम काज उसे खुद ही करना पड़ता, सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी, वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी, वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आव देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था, दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया, आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली, उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी, रस्सा कसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्सा कशी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा, उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, तुम वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया, झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। अम्मा को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यही रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। तो बताइए, कैसी लगी आपको कहानी? मजा आया? आपको लगा होगा कि चांद वाली अम्मा भला है कौन, और अम्मा के साथ कोई शरारत कर दे, ऐसी हिम्मत किस में है? और फिर अम्मा ने आसमान को कुछ नहीं कहा, वह आसमान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, और अम्मा जब चांद पे चली गई तो वहीं रह गई। आप बच्चे अक्सर रात को आसमान में चांद देखते होंगे। चांद लगातार बढ़ता है और फिर घटता है। आसमान में चांद तो दिखता है, लेकिन साथ में और कौन नजर आता है? सूरज? नहीं भाई, रात को सूरज का क्या काम, रात को चांद होता है। और चांद के साथ कौन होते हैं? चांद के साथ होते हैं बहुत छोटे छोटे तारे जो टिमटिमाते रहते हैं, और उनका टिमटिमाना ऐसा लगता है कि मानो बहुत सारे छोटे छोटे बल्ब आसमान में जल रहे हैं बुझ रहे हैं, जल रहे हैं बुझ रहे हैं। तो इतना खूबसूरत नजारा होता है आसमान में रात को। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि चांद में दाग है, यानी कि चांद झक सफेद नहीं है, उसमें कुछ काला कालापन दिखाई देता है। तो अब जैसे बच्चे वैसे उनकी नजर। कुछ बच्चों को तो चांद में हाथी घोड़े नजर आते हैं, तो कुछ बच्चों को उसमें मोर नजर आता है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि कोई बूढ़ी अम्मा है जो अपना झाड़ू पकड़े बैठी है। तो ये कहानी आप सब बच्चों को बहुत पसंद आई होगी, लेकिन उषा दीदी के कुछ सवाल हैं। कहानी तो आपने सुन ली, अब कहानी के बाद ये बताना तो जरूरी हो जाएगा कि अगर आसमान ने झाड़ू नहीं छोड़ा होता तो क्या होता? अब सब बच्चे हैरान परेशान से हो रहे होंगे कि भाई या तो आप कहानी सुना लीजिए या हमसे सवाल पूछ लीजिए। लेकिन उषा दीदी आपको कहानी भी सुनाएंगी और आपसे कुछ सवाल भी पूछेंगी। सवाल भी तो मजेदार हैं, ठीक वैसे ही जैसे कहानी मजेदार है। तो मेरा सवाल यही था कि मान लीजिए कि अगर आसमान ने झाड़ू नहीं छोड़ी होती तो क्या होता? तो यही होता कि अम्मा झाड़ू पकड़े पकड़े आसमान के साथ उड़ती रहती, कभी इधर कभी उधर, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, और बेचारी झाड़ू पकड़े पकड़े थक जाती। और हो सकता था कि थकान की वजह से उनके हाथ से झाड़ू छूट जाता और वो धम से जमीन पर आ गिरती। लेकिन आसमान को बूढ़ी अम्मा का यूं जमीन पर गिरना भी तो पसंद नहीं था, तो आसमान बादल की मदद लेता। बादल से कहता कि जैसे ही बूढ़ी अम्मा नीचे गिरने लगे, तुम बूढ़ी अम्मा के नीचे चले जाना और उन्हें कालीन जैसा कोमल बिस्तर दे देना। तो अम्मा अगर गलती से भी झाड़ू छोड़ देती और नीचे धम्म से गिरती तो बादल उन्हें पकड़ लेता। बादल अम्मा को गिरने नहीं देता। अब ये बात तो थी आसमान की, यानी कि आसमान को शरारत करना बहुत पसंद है, ठीक वैसे ही जैसे आप बच्चे तरह तरह की शरारतें करते हैं, दूसरों को डराते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, और आपको दूसरों को यूं डराना परेशान करना बड़ा अच्छा लगता है। तो आप हमें बताइए कि आप किस तरह की शरारतें करते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि हम तो छिप जाते हैं। मम्मी जब थाली में भोजन लेकर आती है और हमारी पसंद की सब्जी नहीं बनती है, यानी मम्मी बनाती है करेला, तोरई, लौकी, कद्दू, तो हमें पसंद नहीं आता, तो हम चुपचाप छुप जाते हैं। कहाँ छुपते हैं? पर्दे के पीछे, दरवाजे के पीछे, पलंग के नीचे और तो और कभी कभी हम मम्मी के पीछे ही घूमते रहते हैं और मम्मी को पता ही नहीं चलता कि नंदू तो उनके पीछे पीछे है और मम्मी जो है वे आगे देखती है। और कभी कभी हम अपनी दादी के पल्लू में भी छिप जाते हैं। जब मम्मी भोजन की थाली लेकर पूछती हैं, अम्मा आपने नंदू को कहीं देखा है क्या, तो दादी झट से कह देती, अरे नहीं बहू, नंदू तो यहाँ वहाँ खेल रहा होगा, गया होगा अपने दोस्तों के पास बाहर, तुम उसे बाहर जाके ही ढूंढो। जबकि अम्मा को तो पता है कि नंदू उनके पल्लू में उनके आंचल में छिपा बैठा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप और आपकी दादी सब मिलकर मम्मी से खूब मजा लेते हैं, तो कभी कभी पापा भी हमसे मजा ले लेते हैं। पापा कहेंगे कि देखो नंदू, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, और एक लिफाफा पकड़ा देंगे और नंदू उसे खोलने के लिए बेचैन बेताब होगा। और जब लिफाफा खोला तो देखा उसमें तो कुछ भी नहीं था, अरे ये तो पापा ने हमारा उल्लू बनाया। फिर आप झूठ मूठ का नाराज होते हैं और पापा आपको खूब मनाते हैं। तब उनकी पॉकेट से निकलती है एक टॉफी और एक चॉकलेट और एक गुब्बारा, तो तरह तरह के छोटे छोटे खिलौने लेकर पिताजी आपको यानी कि पापा आपको मनाते हैं। बच्चे अक्सर बड़ों से रूठ जाते हैं, नखरे दिखाते हैं, तरह तरह के नखरे दिखाते हैं, पर पता है बच्चों, नखरे वही दिखाते हैं जिन्हें ये मालूम होता है कि उन्हें कोई मनाने वाला है, इसलिए वे नखरे दिखाते हैं। अब आप ही सोचिए, अगर आपको ये पता हो कि आपकी दादी, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपकी बहन, आपका भाई, इनमें से कोई भी आपका नखरा नहीं उठाएगा, तो क्या आप इनसे नाराज होंगे, क्या आप नखरे दिखाएंगे? तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे, नहीं हम तो ऐसा नहीं करेंगे। अब ऐसा नखरे दिखाने का क्या फायदा, झूठ मूठ का गुस्सा दिखाने का क्या फायदा, जब कोई हमें मनाए ही नहीं। तो आपने ये कहानी सुनी चांद वाली अम्मा, तो आपको इस कहानी को सुनने के बाद अपनी एक नई कहानी बनानी है। और ये नई कहानी क्या होगी, नई कहानी ये है कि अगर आसमान ने झाड़ू को नहीं छोड़ा होता तो क्या होता। तो आप अपनी कहानी लिखिएगा, लेकिन इसके साथ यानी कि झाड़ू से याद आया कि हम झाड़ू का इस्तेमाल करते क्यों हैं। तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत आसान सवाल है, हम झाड़ू से घर की गंदगी साफ करते हैं, घर का कूड़ा बाहर निकालते हैं और घर की साफ सफाई करते हैं। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने झाड़ू का इस्तेमाल किसके लिए किया था, सफाई करने के लिए, और उन्होंने झाड़ू से आसमान को मारा था। लेकिन क्यों मारा था, इसलिए क्योंकि आसमान बूढ़ी अम्मा के साथ शरारत करता था। तो अम्मा जैसे ही झाड़ू लगाने के लिए झुकती, आसमान उनसे टकरा जाता, तो अम्मा परेशान हो गई थी, इसलिए अम्मा ने आव देखा न ताव और कस कर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक चीज हम कई कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी समझने वाली बात है कि आव देखा न ताव, कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। अब इसमें आव देखा न ताव का मतलब क्या है, इसका मतलब हम क्या आव देख रहे हैं या ताव कोई चीज है? ना तो इसमें आव का कोई मतलब है न ताव का कोई मतलब है, ये तो बस एक मुहावरा है। आव देखा न ताव यानी कि हमें कुछ नहीं सूझा और हमने झट से वह काम कर दिया। यानी कि जब बहुत तेज गुस्सा आ जाता है तो फिर हम आव देखते हैं न ताव, यानी कि हम सोचते नहीं है, विचारते नहीं है और तुरंत एक काम को कर देते हैं। कहानी में एक जगह ये बात आई थी आसमान के लिए, वह बात थी पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। इसका मतलब है कि आसमान को ये बहुत पसंद था, यानी कि आसमान की आदत में शुमार हो गया था कि वह बूढ़ी अम्मा से टकराए। आपकी ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि आप अपनी इस आदत से मजबूर हैं? पड़ोस में रहने वाला जो मयंक है ना, वह अक्सर पेंसिल से अपने कान को खुजाता है, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है। वह अपनी इस आदत से मजबूर है। और मयंक के पड़ोस में जो प्रियंका रहती है, वह अक्सर हर बात पर लंबी चौड़ी गप छोड़ती है, यानी कि गप का मतलब होता है जो चीज नहीं है उसे कहना, या जो चीज अभी बहुत सामान्य सी है उसे बढ़ा चढ़ाकर कहना। जैसे अगर किसी ने कहा कि पता है मेरे पिताजी कितने लंबे हैं, तो नंदू ने कहा हाँ मेरे पिताजी 6 फुट के हैं। प्रियंका कहेगी अरे हाँ तुम्हारे पिताजी तो 6 फुट के हैं, पता है मेरे पिताजी कितने फुट के हैं? तो प्रियंका ने कहा मेरे पिताजी तो ये लंबे हैं और पूरा 10 फिट के हैं। अब ये तो कोरी गप हुई कि कोई व्यक्ति 10 फिट का होगा। तो अक्सर बच्चे प्रियंका की इस आदत से परेशान हो जाते हैं, लेकिन प्रियंका अपनी आदत से मजबूर है। वह यह लंबी लंबी छोड़ती है कि सारे बच्चे उसे देखते रह जाते हैं। कहानी में एक बात और आई थी बच्चों, ये बात थी रस्सा कशी की। रस्सा कशी वही खेल जिसमें एक तरफ एक टीम होती है और दूसरी तरफ दूसरी टीम होती है। अब आप ये कहेंगे ये तो क्या बात कही उषा दीदी ने, रस्सी के अगर 2 सिरे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक सिरे पर एक टीम होगी और दूसरे सिरे पर दूसरी टीम होगी, इसमें खास क्या है? तो इसमें खास बात ये है कि हम रस्सा कशी में अक्सर ये देखते हैं कि किसकी ताकत ज्यादा है, किस टीम में बहुत बल है और कौन सी टीम पूरी रस्सी को अपनी तरफ ले जाएगी। तो रस्सा कशी में जब दोनों टीमें दोनों सिरे पर खड़ी हो जाती हैं, तो बीचों बीच एक रुमाल बांध देते हैं और उस रुमाल के या कपड़े के ठीक नीचे एक लाइन

झाड़ू पकड़ ली थी और अम्मा ने भी झाड़ू पकड़ ली थी, तो झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान ने पकड़ा और झाड़ू का नीचे वाला हिस्सा अम्मा ने पकड़ा। ना आसमान झाड़ू छोड़ने को तैयार और ना अम्मा झाड़ू छोड़ने को तैयार। तो अब सोचिए कि अगर अम्मा आसमान में झाड़ू पकड़े पकड़े उड़ रही हैं, तो क्या उन्हें डर नहीं लगा होगा? और अगर डर लगा होगा तो अम्मा ने क्या किया होगा? भाई मैं तो बहुत डर जाती, अगर मैं अम्मा की जगह होती और यूं झाड़ू पकड़े रहती और आसमान मुझे ऊपर लिए जाता तो मैं नीचे देख के घबरा जाती। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतने बड़े बड़े मकान, इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ, इतने बड़े बड़े तालाब, सब बहुत छोटे छोटे छोटे से नजर आते। जैसे जैसे मैं आसमान के साथ ऊपर चढ़ती जाती वैसे वैसे मेरा डर बढ़ता जाता। तो अब अगर सोचिए कि अम्मा ने आसमान को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन आसमान था कि माना ही नहीं, तो अगर अम्मा को घबराते हुए बोलना होगा आसमान से कि वह उसे छोड़ दे, तो फिर अम्मा ने यह बात कैसे कही होगी? अम्मा ने घबरा कर ये बात आसमान से यूं कही होगी, अरे छोड़, मैं मर जाऊंगी, इस बुढ़ापे में गिर गई तो टूटी हड्डी जुड़ेगी भी नहीं, अरे भाई छोड़ छोड़ दे, गिर पड़ी तो क्या होगा। इस तरह से अम्मा ने यह बात घबरा कर कही होगी। और अगर अम्मा ने यही बात गिड़गिड़ा कर कही होगी तो कैसे कही होगी? तो वो कुछ इस तरह से कही होगी, अरे बेटा आसमान, छोड़ दे मेरे बच्चे, मैं गिर गई तो हड्डी पसली टूट जाएगी और फिर जुड़ेगी भी नहीं, छोड़ दे मेरे बच्चे, छोड़ दे। कुछ इस तरह गिड़गिड़ाते हुए अम्मा ने यह बात आसमान से कही होगी। और अगर अम्मा को गुस्सा आ गया तो गुस्से में कैसे कहा होगा? तो गुस्से में कुछ इस तरह से कहा होगा, ओ आसमान के बच्चे, छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा, तुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैं मर गई तो क्या होगा, छोड़, और अगर तू मेरे हत्ते चढ़ गया तो तेरा सा कचुम्बड़ बनाऊंगी ना, तो जिंदगी भर याद रखेगा, छठी का दूध तुझे याद ना दिला दिया तो मेरा नाम भी अम्मा नहीं। यूं कुछ कहा होगा अम्मा ने गुस्से में। और अगर अम्मा को कोई तरकीब सूझती तो अम्मा कैसे कहती? तो अम्मा कुछ ऐसे कहती, अच्छा ठीक है आसमान, तुझे मुझे ऊपर ले जाना है तो तू मुझे ऊपर ले चल, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन मैं तेरे साथ आसमान में इतने दिन रहूंगी, कपड़े लगते तो मैंने लिए नहीं, तो एक काम ये करते हैं, तू मुझे नीचे छोड़, मैं अपने घर से कपड़े लगते की गठरी बना लेती हूँ, फिर तेरे साथ ऊपर आसमान में रहूंगी। तो ये बात हुई तरकीब वाली। तो इसका मतलब ये है कि जब हम अलग अलग स्थितियों में अलग अलग उद्देश्य के लिए अपनी बात कहते हैं तो हमारी भाषा अलग होती है, हमारे कहने का अंदाज अलग होता है और हमें ये पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति हमसे नाराज होकर ये बात कह रहा है या फिर घबरा कर ये बात कह रहा है या फिर उसे कोई तरकीब सूझी है। तो कहानी में ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि हम अलग अलग स्थितियों में अलग अलग अंदाज में अपनी बात कहते हैं, लेकिन कहानी लिखना मत भूलिएगा। अब आप क्या करेंगे? अब आप अपनी कहानी बनाएंगे, यानी कि जिसमें आसमान होगा, जिसमें चांद होगा, बादल होंगे और होंगी एक बूढ़ी अम्मा। बस आपको झटपट एक कागज पर अपनी कहानी बनानी है, कल्पना कीजिए, कल्पना के घोड़े दौड़ाइए, खूब तेज दौड़ाइए और अपनी एक मजेदार सी कहानी लिखकर हमारे पास भेज दीजिए। भेजना कहाँ है? भेजना तो वही है जहाँ हम आपका इंतजार करते हैं। अब आप पूछेंगे कि आप हमारा इंतजार कहाँ करते हैं? वही इस पते पर। और हमारा पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। पता एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ, earlyliteracy.ncert@gmail.com। आप अपनी मजेदार कहानी बनाइए, चित्र बनाइए और हम उन्हें आपकी ही बाल पत्रिका यानी फिरकी बच्चों की इसमें प्रकाशित करेंगे। ये एक ऐसी पत्रिका है जो विशेष रूप से नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए है। उनकी पत्रिका है तो जाहिर सी बात है कि उनकी कहानियाँ, उनकी कविताएं, उनके चित्र, उनके अनुभव इस पत्रिका में जगह पाएंगे। और बड़ों की क्या जिम्मेदारी है? बड़ों की जिम्मेदारी ये है कि जिन बच्चों ने कहानियाँ कविताएं लिखी हैं, बड़े चित्रकार उन पर चित्र बनाएंगे।

0: बड़े भी काम करेंगे और नन्हे मुन्ने बच्चे भी काम करेंगे, लेकिन बड़े किसका काम करेंगे, बच्चों के लिए काम करेंगे। ये चैनल भी तो बच्चों के लिए है और हम भी बच्चों के लिए हैं। तो आज के लिए बस इतनी कहानी, और उषा दीदी आपसे बहुत जल्दी मिलती है एक नई कहानी के साथ, कुछ नए कामों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग, तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क जाँच और उपचार पाए। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाए।
2: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
1: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे यानी कि ये पांच जूस। वो कौन कौन से पांच जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए पांच हेल्दी जूस जरूर पिएं। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: इंसान को अपनी उम्र का एहसास तब होता है जब जिंदगी में उसकी बहुत सी पहलुएं धीरे धीरे बंद होती जाती हैं या ख़त्म होती जाती हैं, और पंचम मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा ही पहलू है। पंचम के साथ क्या रिश्ता था मैं नहीं जानती, या मैं उसे कोई नाम नहीं देना चाहती। पंचम के साथ मैंने बहुत फिल्मों में काम किया,

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

अब ये नहीं बचा पाएंगे अपने आप को।

0: अब मैं जाऊंगी उनके पास जो नहीं है तारा की तरह तैयार।
1: टीम तारा, मच्छर आ रहे हैं, क्या तुम सब हो तैयार?

0: अगली बार हम सीखेंगे कि क्या करना है अगर आ जाए बुखार।
1: तब तक रहो तारा की तरह तैयार। बाय बाय।

धरती मेरी धरती प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की कड़ी। फुटबॉल और जीवन।

0: मानव मानव, अरे ये यूनिफॉर्म नहीं उतारा अभी तक, क्या बात है आज बिल्कुल चुपचाप बैठा है। स्कूल में किसी से झगड़ा हुआ क्या?
1: नहीं नहीं मम्मी, झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं। असल में अगले शनिवार मानव की टीम का दूसरे स्कूल की टीम के साथ फुटबॉल मैच है, बस इसी को लेकर परेशान है।
2: अरे मानव, खेलने में परेशानी की क्या बात है?
1: असल में विवेक भैया, मानव की टीम हर बार हार जाती है, पर पता नहीं क्यों मानव ने इस बार दूसरी टीम के कप्तान पिंटू से ये कह दिया कि इस बार मानव की टीम ही जीतेगी और अगर नहीं जीतेगी तो मानव कभी फुटबॉल नहीं खेलेगा।
3: मानव, ये मैं क्या सुन रहा हूँ है? ये तो बड़ी गलत बात है। पहली बात तो बेटा, खेल में शर्त नहीं लगाते, और दूसरी बात, अगर शर्त लगा ही ली तो फिर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो और जीतो।
0: हाँ, ऐसे मुंह लटकाने से जीत थोड़े ना मिल जाती है मानव।
2: अब जल्दी कर, कपड़े बदल और मैदान जाकर प्रैक्टिस कर। चलो खड़ा हो।
4: पर भैया, पिंटू की टीम बहुत तगड़ी है, हम उसे नहीं हरा सकते।
2: मानव, ये तो तुझे उसे चुनौती देते वक्त सोचना चाहिए था, और वैसे भी फुटबॉल एक टीम का खेल है। अगर खिलाड़ी एक दूसरे के साथ सही तालमेल से खेलें तो किसी भी टीम को हरा सकते हैं।
1: और अब जा, तैयार होकर अपनी टीम इकट्ठी कर और प्रैक्टिस शुरू कर। अब जाना।
2: जा, चल चल।
4: नहीं दीदी, पिंटू की टीम के सब खिलाड़ी अच्छे हैं, हम कितनी भी प्रैक्टिस कर लें उनसे नहीं जीत सकते।
0: ओहो।
1: लो भाई, अपने मानव ने तो खेलने से पहले ही हार मान ली।
3: अब कौन आ गया? अब लगता है डॉक्टर इस्लाम, ब्रिजमोहन और डॉक्टर अल्पना जी आ गए। मैं दरवाजा खोलता हूं। हाँ।
5: बहुत अच्छा रहा भाई साहब। आज असल में महासागरों, सागरों, वर्षादी का पोषक तत्वों के वितरण में भूमिका पर चर्चा थी।
6: हाँ सूर्य प्रकाश, काफी अच्छी चर्चा रही।
0: लीजिए भाई साहब, पानी पीजिए।
5: थैंक यू भाभी।
7: अरे ये मानव का मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या बात है मानव, डांट पड़ी है क्या?
1: नहीं अल्पना आंटी, असल में मानव ने एक तगड़ी टीम से फुटबॉल खेलने और जीतने की शर्त रख ली है।
2: हाँ आंटी, और अब प्रैक्टिस करके उन्हें टक्कर देने के बजाय पहले से ही हार मानकर बैठा है।
7: क्या मानव, ऐसे हार मानकर कैसे काम चलेगा? अच्छा ये बताओ, कब है मैच?
4: अगले शनिवार को।
5: अरे भाई मानव, अगले शनिवार में तो पूरा एक हफ्ता है, तुम अभी से हार मानकर बैठ गए हाँ?
6: और क्या, अब ऐसे ही सारे महासागर, तेज बहती हवाएं, वायुमंडल हार मानकर बैठ जाएं तो चल गया जीवन है?
4: क्या इस्लाम अंकल, कहां फुटबॉल का खेल और कहां महासागर वायुमंडल की बातें।
6: अरे वाह, क्या अलग है दोनों में? दोनों ही यानी महासागर वायुमंडल फुटबॉल की टीम के खिलाड़ियों की तरह एक दूसरे के सहयोग से ही तो चलते हैं।
5: हाँ भाई, इस आपसी समन्वय से फुटबॉल में तुम मैच जीतते हो, और महासागर वायुमंडल के आपसी समन्वय से जीतता है जीवन।
7: और जीवन तो निरंतर जीतता चला आ रहा है, क्योंकि महासागर और वायुमंडल अपने तालमेल को बिगड़ने ही नहीं देते।
1: वो कैसे अल्पना आंटी?
5: भाई वो डॉक्टर इस्लाम बता रहे थे कि पिछली बार आप सबसे जो बातें हुई थी उसमें उन्होंने एक बूंद के पूरे सफर को बताया था।
7: कैसे ये बूंद मानव की पसंदीदा भिंडी बन गई थी।
1: पसंदीदा।
6: देखो भाई मानव, जैसे तुम्हें मैंने बताया था कि सूरज से सिर्फ ऊर्जा हमें मिलती है, इसी ऊर्जा से ही महासागरों व वायुमंडल में गतिविधियां होती हैं, और फिर वायुमंडल अपनी गति लेता है,
7: और इन सब गतिविधियों की वजह से मौसम बनते हैं, पोषक तत्वों का हस्तांतरण होता है, ऊर्जा अपना रूप बदलती है और जीवन सांसें लेता है।
5: देखो मानव, समुद्री पानी में समुद्री जीवों के लिए ऐसे पदार्थ होते हैं जो समुद्री जीवों के पोषण और शंख आदि की संरचना के लिए आवश्यक होते हैं।
7: हाँ भाई, सागर के पानी में सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम आदि के यौगिक होते हैं, जिनके साथ बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनियम, लौह और मैग्नीज भी सतही जल में मौजूद होते हैं।
6: बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर अल्पना, ये सब एक मित्रण के रूप में सागरों की ऊपरी सतह के जल में होते हैं।
3: हाँ।
6: जहाँ सूरज की रोशनी काफी मात्रा में होती है, इसीलिए वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है।
2: अच्छा।
6: हाँ, इस प्रक्रिया में खनिज लवण जैविक पदार्थ में बदल जाते हैं और जीवन को आधार मिलता है।
4: अंकल इतना तो मैं जानता ही हूँ, पर इससे फुटबॉल मैच कैसे जीतूंगा?
3: अरे मानव, जीतोगे जीतोगे, पहले पूरी बात तो सुन लो। भाई ये खाद्य श्रृंखला सतही जल पर तो चलती रहती है, परंतु बहुत सारा जैविक पदार्थ जीवों के मरने के बाद सागरों के तल में समा जाता है। मैं दोस्त किसका हूँ तुम्हारा ही ना।
1: फिर ये पोषक तत्व समुद्र की ऊपरी सतह पर रहने वाले जीवों को कैसे मिलते हैं?
6: सृष्टि बेटा, यही तो आपसी समन्वय है। जीवाणुओं की क्रिया द्वारा ये पोषक तत्व सागरों की अतल गहराइयों में आयनी रूप में बदल जाते हैं, और सूरज की ऊर्जा के इंजन से चलने वाला महासागरीय चक्रण इन पोषक तत्वों को वापस सतही जल में पहुंचा देता है, जहां फिर जीवन खिलने लगता है।
4: पर ये पानी ऊपर नीचे होता कैसे है?
1: अरे वाह, मानव को तो रोचक लगने लगा ये सब। लीजिए भाई साहब चाय पीजिए, और ये लीजिए पैटीज।
3: हेलो भाई, वसुधा भी पोषक तत्व लेकर आ गई है। थैंक यू वसुधा। लीजिए लीजिए, आप लीजिए ना, विश्राम ले रहा
7: हूं। हाँ भाई, तो मानव जानना चाह रहा था कि ऊपर का पानी नीचे और नीचे का पानी ऊपर कैसे जाता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
7: तो भाई ये सब घनत्व के उतार चढ़ाव के कारण होता है।
1: हाँ। यानी पानी का खारापन।
2: हाँ। और ये खारा इसलिए होता है क्योंकि नदियां अपने साथ मिट्टी आदि को बहा कर लाती हैं, उनमें लवण होते हैं, और महासागरों में फटने वाले ज्वालामुखी आदि से लवण समुद्र के पानी में घुल जाते हैं।
5: वाह वाह वाह विवेक भाई, तुम्हें तो बहुत जानकारी है।
2: थैंक यू अंकल।
5: शाबाश शाबाश।
4: पर विवेक भैया, नमक से महासागरों के पानी के ऊपर नीचे होने का क्या संबंध है?
6: अरे भाई, सारा आपसी समन्वय है, हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। जैसे फुटबॉल में फॉरवर्ड बैकवर्ड, ऐसे ऊर्जा की भी भूमिका और नमक की भी है।
7: वो कैसे भाई? महासागरों में पानी का घनत्व लवणता और तापमान की भिन्नता से प्रभावित होता है। ठंडा और खारा पानी ही सबसे सघन होता है, तो ये ठंडा नमकीन पानी समुद्र तल की ओर नीचे बैठ जाता है।
3: हाँ।
7: जबकि गर्म कम नमकीन पानी जिसकी सघनता कम होती है वो महासागरों की सतह पर बना रहता है।
5: अच्छा। तो इस तरह अलग अलग महासागर की परतों पर सघनता की भिन्नता रहती है, तब जाकर बनते हैं सागर की गहराइयों में प्रवाह। जब ध्रुवीय क्षेत्रों से ठंडा नमकीन भारी पानी तल की ओर बैठता है तो ये प्रवाह बनता है।
7: महासागरों के तल पर होता हुआ ये पानी ध्रुवों से भूमध्य रेखा के गर्म पानी की ओर चल देता है।
2: अच्छा।
7: भूमध्य रेखा पर हवाएं अपनी भूमिका निभाती हैं, और ये निरंतर चलती हवाएं भूमध्य रेखा के गर्म सतही पानी को ध्रुवों की ओर ढकेलती हैं, और सागर के तल से ठंडा पानी सतह की ओर ऊपर उठता है।
5: फिर ये पानी गर्म होकर ध्रुव की ओर बढ़ जाता है। हवाएं इस सतही पानी को धकेलती हुई ध्रुवों पर पहुंचाती हैं, और फिर यह पोषक तत्वों से भरपूर सतही जल कई प्रकार के जीवों के काम आता है, और फिर पूरा चक्र दोबारा चलता है।
1: कमाल है।
7: हाँ सृष्टि, ये सब प्रकृति के आश्चर्यजनक कर्म हैं, जिन्हें जितना समझो उतना ही अचरज होता है।
6: असल में सृष्टि बेटे, ये सारी गतिविधियां इसलिए होती हैं क्योंकि सूरज हमारे ग्रह को एक जैसा गर्म नहीं करता। जहाँ एक ओर भूमध्य रेखा पर सूरज की सबसे अधिक ऊष्मा महसूस होती है, वहीं दोनों ध्रुवों पर सूरज की ऊर्जा सबसे कम होती है।
5: अब जैसे सघनता और तापमान की भिन्नता के कारण महासागर के अलग अलग परतों में गतिविधियां होती हैं, ऐसे पूरी धरती पर महासागरों और वायुमंडल की कई परस्पर गतिविधियां होती रहती हैं।
7: पानी हवाओं आदि सभी का एक निश्चित चक्र होता है जो तापमान और सघनता के द्वारा तय होता है।
2: इस्लाम अंकल,
6: बोलो विवेक।
2: आपने पिछली बार बताया था कि महासागर ऊपर से नीचे की ओर गर्म होते हैं और वायुमंडल नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है, ठीक?
6: हाँ विवेक, बिल्कुल।
2: तो अंकल, इससे फर्क क्या पड़ता है?
6: देखो विवेक, जैसा डॉक्टर अल्पना ने बताया कि सघनता और तापमान के फर्क से एक चक्र बनता है।
2: अच्छा।
6: असल में इन्हीं कारणों से कम दबाव या अधिक दबाव के क्षेत्र बनते हैं। इस सघनता की भिन्नता में समानता लाने के लिए ये चक्र चलते रहते हैं। जब वायुमंडल में ये गतिविधियां होती हैं, तो विभिन्न प्रकार के मौसम बनते हैं।
7: तो बच्चों, ये महासागरों की सतह पर बहने वाली हवाएं लहरें तो पैदा करती ही हैं, साथ ही साथ सतही पानी से ऊष्मा लेकर उस पानी को ठंडा करती हैं और खुद ऊपर की ओर उठ जाती हैं।
1: हाँ हाँ आंटी, ये तो हम जानते हैं।
4: हाँ, पर मैं फुटबॉल मैच कैसे जीतूंगा?
0: मानव तो अभी तक फुटबॉल में अटका हुआ है।
1: क्या मानव?
5: अच्छा तो है भाभी, इतनी गंभीर बातों में भी मानव अपना लक्ष्य फुटबॉल नहीं भूला। बस मानव, महासागर और वायुमंडल का आपसी संबंध समझ लो तो फिर तुम्हारी जीत पक्की समझो।
4: कैसे अंकल?
6: अरे भाई, इतनी बड़ी पृथ्वी, उस पर करीब 72% में महासागर है जो धरती पर ऊष्मा के सबसे बड़े भंडार है।
7: पता है मानव, धरती के सारे महासागरों के ऊपरी 10 फीट में इतनी ऊष्मा समाई है जितनी के पूरे वायुमंडल में।
3: अच्छा। हाँ, और इससे आश्चर्यजनक बात ये है कि हर छोटे बड़े चक्र और प्रवाह के द्वारा महासागर इस ऊष्मा का हस्तांतरण करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं।
6: सूर्य प्रकाश, मैं एक उदाहरण देता
3: हूँ। हाँ जरूर जरूर जरूर,
6: आप तो वाह वाही बोले जा रहे, कितनी
8: कितनी जानकारी।
3: अरे हाँ भाई, ये बात बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
6: अच्छा तो मैं उदाहरण की बात कर रहा था।
3: हाँ, बताओ।
6: तो पार अटलांटिक खाड़ी प्रवाह में भूमध्य रेखा से आया गर्म पानी करीब 4.5 अरब घन फुट प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है।
3: हाँ।
6: यानी उत्तर दिशा की ओर जाने के लिए प्रति घंटा इतनी ऊर्जा लगा देता है जितनी 5 अरब टन कोयला जलाने से पैदा होती है।
1: बाप रे, इतनी ऊर्जा।
7: हाँ सृष्टि। अच्छा सृष्टि, कभी तुमने सोचा है कि समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्रों में या फिर बड़ी झील के आसपास के क्षेत्रों में या फिर पहाड़ी इलाकों के तराई क्षेत्रों में निरंतर हवाएं क्यों चलती हैं?
2: आंटी, ऐसा दबाव की भिन्नता के कारण होता होगा।
5: अरे वाह विवेक, हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आमतौर पर ऐसा इसलिए ही होता है, परंतु सामान्यतः तेज हवाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। परंतु कुछ हवाएं बिल्कुल ऐसे नियमित रूप से चलती हैं जैसे सूरज का उदय और अस्त।
1: अच्छा, वो कैसे अंकल?
6: असल में बेटा, जैसा डॉक्टर अल्पना ने बताया कि महासागरों के किनारों पर या बड़ी झील आदि के किनारों पर निरंतर हवाएं चलती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन में सूरज भूमि को सागर की तुलना में तेजी से गर्म करता है। इस कारण भूमि की गर्म हवा ऊपर उठती है और उसकी जगह समुद्र या बड़ी झील से आने वाली ठंडी हवा ले लेती है।
7: और रात को ठीक उल्टा होता है, जमीन पानी की तुलना में ठंडी होती है, इसलिए रात को किनारों से ठंडी हवाएं पानी की ओर चलती हैं। इस तरह ये कुछ ऐसे छोटे छोटे चक्रों का उदाहरण है जो बहुत ही सीमित इलाकों में निरंतर क्रिया करते रहते हैं।
1: और तराई के इलाकों में क्या होता है?
6: सृष्टि बेटे, तराई के इलाकों में जब सूरज निकला होता है तो पहाड़ों की अगल बगल की और ऊपरी हवाएं गर्म हो जाती हैं, जिससे गर्म हल्की हवाएं ऊपर उठती हैं और तराई से बाहर की ओर निकलती हैं। इसे एक ऐसा चक्र बनता है जो दिन भर चलता रहता है, यानी ठंडी बयार बहती रहती है।
7: हाँ। और रात को जब पहाड़ों की ऊपरी और अगल बगल वाली हवाएं ठंडी हो जाती हैं, तो ये सघन हवाएं तराई में नीचे की ओर आती हैं, जिस कारण पहाड़ों से आने वाली हवाएं रात भर चलती रहती हैं।
3: बिल्कुल ठीक।
1: पर ये तो बहुत कम इलाकों में होता है, पूरी धरती पर महासागरों और वायुमंडल का चक्र कैसे चलता है?
5: देखो बच्चों, तुम्हें भूमध्य रेखा के ध्रुवीय क्षेत्रों का सफर तो हमने कुछ कुछ बता दिया।
2: हाँ,
5: वायुमंडल के चक्र को फिर आगे चलकर बताएंगे, अभी तुम्हें महासागरों के विभिन्न चक्र प्रवाह आदि थोड़ा थोड़ा बहुत बता देते हैं, ठीक है?
4: पर अंकल, इससे फुटबॉल मैच कैसे जीतूंगा?
6: ओ मानव, इतना समझा रहे हैं फिर भी नहीं समझ रहे हो तुम। अरे सतही प्रवाह, जलवायु नियंत्रण, अंतरजलीय प्रवाह, वाष्पन, वर्षा, नमी, दबाव आदि सभी इतनी सैकड़ों घटनाएं हैं जिनमें सब एक आपसी सहयोग और समन्वय नहीं बना सकते। समझ गए ना? समझ गए ना
4: अंकल? अब कुछ कुछ समझ आ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं।
3: चलो मानव को कुछ समझ तो आया।
1: तो अंकल, मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि महासागर धरती के मौसम को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि वो भूमि को गर्म और ठंडा करते हैं, हवा को नमी देते हैं और शुष्क भी करते हैं, और हवा की गति एवं दिशा को भी नियंत्रित करते हैं, है ना?
6: वाह वाह सृष्टि बेटे, वाह, इतना सरल तो हम भी नहीं कह पाते। शाबाश बेटे, शाबाश।
3: मैं कह लूं कि जैसा पिता वैसी पुत्री।
6: प्रकाश जी तो कमाल की बात करते हैं।
7: सृष्टि बेटा, इसके अलावा महासागरों का जल वाष्पित होकर बादल बनाता है जो संघनित होकर वर्षा के रूप में बरसते हैं।
5: गर्म जल की धारा शीत ऋतु को थोड़ा कम तकलीफ दे बनाती है, तो गर्मियों में ठंडी धारा थोड़ा सुकून पहुंचाती है।
6: हाँ भाई, ये तो कुछ उदाहरण है जिनके द्वारा हम कह सकते हैं महासागर हमारी धरती की जलवायु पर अपना प्रभाव डालते हैं।
7: हमारी जलवायु प्रणाली के अंतर्गत ये महासागर ताप के इंजन के रूप में कार्य करते हैं।
4: वो कैसे?
1: अरे मानव, फुटबॉल करता रहेगा तो ये सब समझ कहाँ से आएगा?
2: हाँ।
1: ये बताया तो था कि भूमि और बर्फ की सतह की तुलना में महासागर ज्यादा ऊष्मा सोखते हैं।
2: हाँ बिल्कुल, ये महासागर भूमध्य रेखा पर सौर ऊर्जा सोखते हैं और उसे विभिन्न प्रवाहों के रूप में ध्रुवों तक ले जाते हैं,
1: और इसीलिए महासागरों को ऊष्मा का भंडार कहते हैं। समझा मानव?
4: हाँ दीदी।
6: महासागरीय प्रवाह कई सारे हैं। ये प्रवाह पूरे महासागरों में बड़े बड़े महापाश यानी लूप के रूप में घूमते रहते हैं। इन्हें गायर यानी वृत्ताकार गति कहते हैं। और जो ये
4: बस अंकल, आज के लिए इतना ही काफी है। आप गायर महासागरीय प्रवाह के बारे में अगली बार बता देना।
3: बेचारा,
4: मुझे अभी फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए भी तो जाना है।
6: शाबाश, ये हुई ना बात। भाई हम तुम्हें महासागर वायुमंडल सब बताएंगे जरूर, पर तुम फुटबॉल की प्रैक्टिस पूरी मेहनत से करो और जीतो।
5: हाँ तो मानव, तुम्हारी फुटबॉल टीम का कप्तान सूरज की तरह होना चाहिए जो पूरी टीम को ऊर्जा दे, समझे?
4: हाँ अंकल।
2: हाँ मानव, तुम्हारे फॉरवर्ड बिल्कुल महासागरीय और वायुमंडल के चक्र और प्रवाह की तरह होने चाहिए जो कभी इधर तो कभी उधर होते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, समझे?
7: और वो लक्ष्य है गोल।
4: हाँ आंटी, अब तो गोल ही जीवन है। मैं चला।

0: भैया सृष्टि पापा मैं जीत गया। मम्मी पता है हमने आज 5 गोल किए और पिंटू है इसकी टीम ने तो बस 2 गोल किए और पता है मैंने 3 गोल किए।
1: शाबाश मानो शाबाश। देखा अपने पर भरोसा करने का फायदा देखा।
0: नहीं पापा असल में हम सब एक पूरी टीम एक पूरी यूनिट के रूप में खेले और इसीलिए जीते।
2: शाबाश। देखा तुम सूर्य महासागर और वायुमंडल के आपसी समन्वय की तरह खेले और जीते।
3: और सृष्टि की इसी बात पर पूरी टीम को मेरी तरफ से आइसक्रीम।
4: हम जानते हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। सूक्ष्म जीव वनस्पतियां व विभिन्न जीव जंतु यहाँ जीवन के विविध रूपों में समन्वय बनाए हुए हैं जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। जीवन का हर एक रूप या कहें कि जीवों की एक प्रजाति अपने अस्तित्व के लिए दूसरी प्रजाति पर निर्भर होती है। पृथ्वी पर जीवन के विविध रूपों की जब हम बात करते हैं तो हम मानव प्रजाति की भी बात करते हैं। यदि हम अपने पर्यावरण को समझना और उसे सुरक्षित बनाए रखना चाहें तो हमें पृथ्वी पर उपस्थित जीवन के विभिन्न रूपों की परस्पर निर्भरता और जीवन के लिए हवा पानी व मिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझना होगा। पृथ्वी पर जीवन लाखों करोड़ों वर्षों के दौरान पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पनपा है। जीवों की वे प्रजातियां पृथ्वी पर रही है जिन्होंने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था। ऐसे परिवर्तन भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट चक्रवात और इसी प्रकार के अन्य प्राकृतिक कारणों से भी हुए होंगे। अक्सर ये परिवर्तन उन प्रजातियों द्वारा लाए गए थे जो विकास की सीढ़ी पर ऊंचे पायदान पर बैठी हैं। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं और विकास के लिए पर्यावरण पर नियंत्रण करने की कोशिश की और यही मानव प्रजाति ने अपने नाजुक संतुलन पर टीके पृथ्वी ग्रह पर भी किया। हमें विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति हम सदियों से परंपरागत स्वरूप से जलावन लकड़ी कोयला व पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त करते आ रहे हैं। आज इस बात को सभी मानते हैं कि कोयले के दहन जैसी मानवीय गतिविधियों से ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड व दूसरी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हुई है जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी ग्रह का तापमान बढ़ने लगा है और पृथ्वी दिनों दिन गर्माती जा रही है। आज हमारे ग्रह पर कई खतरे मंडरा रहे हैं जो मुख्यतः बदलती जलवायु बिगड़ता पर्यावरण प्रजातियों का तेजी से सफाया होना शुद्ध जल की घटती उपलब्धता नदियों का समुद्र में पहुंचने से पहले ही सूख जाना बंजर होती उपजाऊ जमीन ऊर्जा स्रोतों की बिगड़ती हालत बढ़ती बीमारियां तेजी से बढ़ती जनसंख्या और उसका पेट भरना ये सब समस्याएं हैं। इन सब की वजह से आज मानव का अस्तित्व ही खतरे में आ पड़ा है। आज हम चादर से अधिक पैर पसार रहे हैं। बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों से अधिक की आवश्यकता है। मानवीय आवश्यकताओं की मांग पृथ्वी की क्षमता से परे है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक प्राकृतिक साधनों का दोहन कर रहे हैं और जिससे आज विकासशील देशों के अरबों लोग संकटों के साए में जी रहे हैं। इस दिशा में विश्व का ध्यान आकर्षित करने और यह बताने के लिए कि पर्यावरण वह है जहां हम रहते हैं और विकास को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखने व समझने की कोशिश करने के लिए कि सभी के सहयोग से हम पृथ्वी ग्रह पर जीवन और जैव विविधता को बनाए रखेंगे। लोगों को चुनौतियों के साथ संभावित समाधानों के प्रति जागरूक करते हुए पृथ्वी ग्रह को संभावित विपदों से बचाना भी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विज्ञान प्रसार 19 भारतीय भाषाओं में

बावन कड़ियों वाला धारावाहिक धरती मेरी धरती विज्ञान प्रसार भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संस्था है, जिसका उद्देश्य विज्ञान संचार को बढ़ावा देने के साथ लोगों में वैज्ञानिक जागरूकता का प्रसार करना है। इस धारावाहिक के माध्यम से पृथ्वी ग्रह के विभिन्न पहलुओं, जैसे पृथ्वी के निर्माण, स्थलमंडल, महासागरों, वायुमंडल, जैवमंडल और जैव विविधता पर हम बात करेंगे। मैं यह आशा करता हूँ कि धरती मेरी धरती धारावाहिक नई पीढ़ी को पूरे ब्रह्मांड में जीवन को पनाह देने वाले इस पृथ्वी ग्रह को बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं जरा सुने।
1: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
0: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

0: आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हाय दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: चलो अब तुम लोगों ने बहुत पढ़ाई कर ली, अब टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा, हो जा फुल्ली।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है। अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @ 90.8 FM।

0: हाय
1: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: बाबू क्या हुआ?
3: हम रोज 29 की रात को सोते हैं और जब सुबह उठते हैं ना तो वापस 29 होती है।
2: हाँ? मतलब
3: हमारी 30 नहीं आ रही है तितली।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

भाइयों और बहनों, इस गाने को आवाज दी है हीर ने, म्यूजिक दिया है हीर और अमन नूर ने, ट्रेडिशनल लिरिक्स अमीर खुसरो। जी हाँ, गाने के बोल हैं, छाप तिलक सब छीनी री मोसे नैना मिला के, फ्रॉम द मूवी गिनी वेयर सनी 2। आइए सुनते हैं छाप तिलक, ओनली ऑन सुरोशा द 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: गगन खोखरी फतेह

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नेड़े होके भी दूरियां रहिंदियां ने, कुछ मोहब्बतां अधूरियां रह के भी पूरियां रहिंदियां ने।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
2: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
1: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
2: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
1: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
1: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
2: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: छह माह का होने के बाद बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उसे अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है और ये बड़ी हुई जरूरत केवल माँ के दूध से पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए छह माह पूरे होने पर बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चले।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.